वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

Princess Alemislatu, happy

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: It's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack them back.
1: Yeah. FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन ऑल द

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो हेलो, हु इज दिस?

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: شاہ جی،
2: وعلیکم السلام۔
1: شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
2: ٹھیک، تسی سناؤ؟
1: بس شاہ جی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک۔ میں کہ میسج بھیجے سے ٹیکسی والا کیڑا سی کار والا
2: جی؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ مین موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گاس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
1: موسم
2: موسم بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیون جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیون میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوگی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب،
1: تو شاہ صاحب، سیاسی پہ یہ آج کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت تو دو سیاسی پیر یہاں پہ گرم ہیں، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البسٹون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: شاہ صاحب، سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے،
2: یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔
1: تو 16 اگست بھی منایا جا رہا ہے
2: جی، اب لوگ دن منائیں گے کوئی 12 کو، لیکن جو آفیشیل جن کے اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، جن کا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو ان کا تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، لیکن جو صرف ابھی اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
1: تو چلیں شاہ صاحب، آفیشیل تو 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں ہوتا ہے، پرچم کشائی ہوتی ہے، تو وہ تو ہر سال کی طرح اسی طرح ہوگا۔ تو شاہ صاحب، اب جو سیاسی موسم ہے یہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے، چھٹیوں پہ چلا گیا ہے، خالی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں سیاستدان۔
2: جی، اس دفعہ سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ریڈیو پہ ہی ان سے بات کرتے ہیں، بلکہ اب عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے ینگسٹرز کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کا جو اہل زبان ہونے کے باوجود ہمیں کچھ انفارمیشن نہیں دے رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 11 دن کے اندر یہاں پہ 7 छुरियों के हमले हुए हैं कोपनहेगन के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि 11 दिन में 7 हमले होना और उनके अंदर सिर्फ सारे फॉरनर्स हैं, मेजॉरिटी फॉरनर्स की है, क्योंकि यूक्रेन के हमारे यहाँ के रहने वाले दूसरे आगे पीछे बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो पुलिस ले रही है, और ये पब्लिक प्लेसों के ऊपर जो है खुसूसी तौर पे मेन स्टेशन पे या पब्लिक प्लेस जैसे फील्ड्स होगी, सेंटर्स हो गए, इनके अंदर इस तरह की बदमाशी करने से
1: ये जो है, जितनी जो कारोबारी ये जगह हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ तो हर तरफ हर कोने खुरदरे में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, कोई चीज तो छुप नहीं सकती शाह साहब यहाँ से।
2: जी वो छुपती नहीं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जलालत ये है कि वो खुद तो अपने दिमागी या रंजस की वजह से किसी के ऊपर वार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बदनामी जो है वो सारे फॉरनर्स की हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ज्यादातर बच्चे जो हैं ये 15 साल से लेकर तो 20 साल 21 साल की उम्र के हैं।
1: सब इन बच्चों को मसरूफ रखना चाहिए ना, स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, उसके बाद माँ बाप का भी तो हक बनता है वो भी तरबियत करें। कुछ बच्चे जो इंसाफ भी नहीं मिलता तो बच्चे जो है वो अपना जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंसाफ नहीं जब मिलता।
2: राजा साहब जब लुटेरे घर का सफाया कर जाएं, डाकू डाका मारने में कोई चीज ना छोड़े तो उस घर के अंदर भूख की हालत होगी। यही हाल यहाँ हमारे चीजों का है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने, मुझे कोई दो राय नहीं, जब यहाँ गवर्नमेंट ने शुरू से ही ऐसे पोलियो रखे हुए हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो कल्चर के लिए जुमले में आता है, यानी कि आप अभी कोई कल्चर करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप हॉकी खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप कोई भी किसी किस्म की गेम करना चाहते हैं, आप कोई बस टूर करना चाहते हैं, कोई भी, बूढ़ों से लेके बच्चों तक गवर्नमेंट ने यहाँ कम्यून ने अदारे बनाए हुए हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी 50-60-100 बंदे की मेंबरशिप करके वहां से हेल्प ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं हर चीज, लेकिन ये मेरा काम नहीं बताने का, ये काम है जो यहाँ के सियासतदान है, जो यहाँ कहते हैं जी ओ जी असी तो बहुत बड़ी डैनिश जबान बोल रहे हैं जी, असी तो PhD हैं जी, असी तो बड़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हम पढ़ के आए हैं, क्या वहां पे ये सियासत पढ़ रहे थे? अगर सियासत पढ़ रहे थे तो क्या वहां पे ये लॉ पढ़ रहे थे? भाई आकर सामने बताएं तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को तो बताएं, बाहर तो निकले अपने, ये जो क्राइम आज हो रहे हैं, अगर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को बराबर के हकूक मिले होते हैं जैसे डेंचो के होते हैं तो ये कभी भी क्राइम ना करते।
1: शाह साहब हकूक तो मिलते हैं, हकूक लेने का वो आपने जिस तरह तरीका बताया, शाह साहब मैं जरा आता हूँ महंगाई की, आपने बात की है तो शाह साहब अगर एक महीने में 5-6 मेले होते हैं तो एक फैमिली वाला अगर हर मेले में जाकर 200-250-400-500 करोड़ खर्च करके आ जाता है तो शाह साहब एक पेंशन वाला कैसे फिर गुजारा करेगा, बच्चों के साथ जाएगा, कोई 1000-1200 लगा के आ जाते हैं। तो शाह साहब हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हम अब गाड़ियाँ हमारे पास बड़ी बड़ी हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सड़क पर आप खड़े हो जाएँ तो कहीं आपको गुर्बत नज़र आती है, किसी स्टोर में चले जाएँ आपको कहीं गुर्बत नज़र आती है, किसी भी पब्लिक प्लेस पर चले जाएँ, सैर वाली जगहों पर चले जाएँ, झूलों वाली जगहों पर जाएँ, कहीं आपको गुर्बत शाह साहब नज़र आती है, किसी मेले में चले जाएँ कोई आपको गुर्बत नज़र आती है?
2: नहीं, हमें वो तो हमें माजरत के साथ एक फैशन शो नजर आता है कि हर कोई अपनी जो है, हर कोई अपने ड्रेस का या अपने पैसे का ताकत या अपनी गाड़ी या दूसरे इमारत की शो जो है वो सामने,
1: महंगाई का जिक्र तो नहीं होना चाहिए ना?
2: नहीं, देखे वो भी जमाना था जब हम बसों पे सफर करके काम पे जाते थे, पैदल चल के काम पे जाते थे, घोड़े घोड़े बर्फ पड़ती थी उस वक्त, उसके अंदर कई कई मील लोग पैदल चल के जाके काम करना करने जाते थे, साइकिलों पे जाते थे, खनेलट होते थे, उनके अंदर 5 करोड़ का पेट्रोल डलता था तो वो पूरा हफ्ता 2 हफ्ते वो गुजारा
1: तो
2: कर लेते थे।
1: लोग स्टेट को गिला नहीं करना चाहिए ना?
2: नहीं, स्टेट को नहीं है, हमारे अपने अपने जो रवायात हैं, हमारे हमने अपनी रवायात को बदल लिया है, हमने 2 कल्चर बना लिए हैं, हमने सबसे ज्यादा बड़ा कल्चर जो है वो पाकिस्तान का कल्चर बनाया है, हम शो मारने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, हम सबसे ज्यादा पैसे, पहले तो आप ये हिसाब लगाएं, आप अकेले जा रहे हैं, 2 बंदे जा रहे हैं, तो कम से कम 25-30-50 हज़ार करोड़ का खर्चा जो आप पाकिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने फैमिली स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे भी आपने हर चीज रखना है, गाड़ी रखनी है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं, जो बच्चों का हक है, उनको आप नहीं दे रहे। अब बच्चे जो हैं, अब छुट्टियों से वापस आएंगे, आप खुद निकल जाएं, आप जर्नलिस्ट हैं, बाहर निकल जाएं, जाके बच्चों से पूछे आपने बेटा कहाँ पे छुट्टियां गुजारी, तो वो कहेगा कि फलाने कजन के घर चले गए, फलाने के पास चले गए, मैंगो फेस्टिवल चले। तो जो डैनिश बच्चे हैं उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे जी हम इटली गए, हम टर्की गए, हम इजिप्ट गए, हम फलानी जगह गए, हमने फलानी जगह स्केटिंग की, हमने फलानी जगह फिशिंग की, वो ऐसी बातें आपको बताएंगे। तो उससे हमारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती तौर पे जो है वो कमजोर हो जाते हैं, और जब वो कमजोर होते हैं तो फिर वो करते क्या है, वो फिर पैसे को हासिल करने के लिए, क्योंकि ज़हनी तौर पे आदमी कमजोर हो जाता है, तो फिर वो ऐसी बातें करता है कि ये हमारा डिफरेंस क्या है, वो अपने माँ बाप से चीजें छुपाता है, वो बाहर भागता है और बाहर जाके वो क्राइम करता है। तो इन चीजों को देखें, आप हमारे ड्रामे देख लें, हमारे कल्चर देख लें, आप घर में बैठे हैं, ड्रामा आपने लगाया देखा है, स्वाइड वो उसके लव मैरिज, ये शादी किसी से हुई है, लव किसी से हो रहा है, ये सारा का कल्चर हमारा जो है, हम लोगों ने कभी भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं की, खुद ही इसके ऊपर इसकी तबाही के हम जिम्मेदार हैं। यहाँ पे कितने घर हैं, यहाँ पे अगर आप जाकर किसी से गवर्नमेंट से बात करें, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चियों के हकूक किस तरीके से पमाल हो रहे हैं, हमारी बहनों के बेटियों के हकूक कैसे पमाल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर यहाँ का जो कानून है वो उसकी पमाली की जाती है। तो राजा साहब ये जो
1: शाह साहब आप जा फरमा रहे हैं, शाह साहब हम कोई काम कानून के मुताबिक नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ मांस व गिले करने के अलावा हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है।
2: देखिए जी, जो भी इस वक्त बात होगी, आप किसी मैंगो फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी डिजाइनर फेस्टिवल पे चले जाएं, किसी आप गाने बजाने वाली महफिल में चले जाएं, यहाँ के काउंसलर्स आए होंगे, यहाँ के सियासतदान आए होंगे, वो घूम फिर के बात होगी अपने गांव की, घूम फिर के बात होगी अपने इलाके की, घूम फिर के बात होगी कि मैं किस मिनिस्टर को मिजा, मेरा कजन कौन जनरल है, मेरा कजन कौन बड़े बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, ये बातें आप सुनेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, हकीकत बिल्कुल बरअक्स होती है।
1: शाह साहब आते हैं, दोबारा वापस आते हैं, शाह साहब आपसे ये सवाल भी करते चले, शाह साहब इलेक्शन, जमहूरी इलेक्शन होना, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जमहूरी जितने इलेक्शन होंगे बेहतरी आएगी। तो शाह साहब जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ आपको 20-20, 20-20, 40-40 लाख लगाने की जो है वो इजाज़त होती है अपने इलेक्शन कंपेन में, करोड़ों अरबों का इलेक्शन हो जाता है, जलसे जुलूस हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडरान जाते हैं, उनकी खातर तो आज़ा होती है, तो शाह साहब जब इतने अखराजात करने के बाद जमहूरियत फिर भी उस तरह की नहीं आती, गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं, आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग बनते हैं जिन्होंने लगाया होता है, फिर वो उन्होंने अपना पूरा भी करना होता है, और उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, जी फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया, फलां एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया। शाह साहब अपने करतूत हम ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, शाह साहब इसकी क्या वजह है?
2: इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शोबाजी के लिए या अपने क्रिमिनल एलिमेंट्स को छुपाने के लिए, जो उनके जो उनका कारोबार होता है उसको छुपाने के लिए वो सियासत में आ जाते हैं, और जब वो सियासत में आते हैं तो फिर उसको ताकत देने के लिए वो ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो। अब आप ये देखें कि आपने बात की तो आपने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, वहां पे एक डॉक्टर, एक बच्चे को डॉक्टरी पढ़ने के लिए जो है वो एक मामूली से मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ जो उसने डिपॉजिट कराना है वो 25-30 लाख रुपया है। अब वो 25-30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, उसको कौन देगा, क्या उसको कोई बैंक एसयू मिल रही है, बैंक लोन दे रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरीके से इंजीनियर, इन्होंने एजुकेशन को इतना इतना गंभीर, इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि लोग जो है और बस शोशा, और कुछ सबसे बड़े मुजरम हम हैं जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ क्योंकि मैं इस माशरे का एक हिस्सा हूँ। हम लोग जब वहाँ जाते हैं, बच्चियों की बेटों की शादियां करते हैं, एक महीने के लिए हम जाते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियां हम वहां रेंट पे ले लेते हैं और फिर वहां पे शो मारते हैं, ये है ये हमारी कोठी। तो अब उनको ये पता नहीं है, उन लोगों को ये पता नहीं कि हम यहाँ किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ किस तरह। ये अच्छी बात है कि अब आगे हमारी जो जनरेशन हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन, ये अच्छे अच्छे ओहदों पे यहाँ पे लग गए हैं। लेकिन इससे पहले तो हम सब मजदूर थे, यहाँ पे कौन सा डॉक्टर था, कौन सा इंजीनियर था, कौन कुछ था।
1: लेकिन शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, शाह साहब आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं और हकायक की रोशनी को सामने रखकर रोशन करें। शाह साहब क्या यहाँ डेनमार्क में रहते हुए अपनी सियासी जमातें होनी चाहिए या डेनिश सियासी जमातों में हिस्सा लेना चाहिए?
2: देखिए जी, मैं तो प्रायोरिटी दूंगा कि यहाँ पे डेनिश सियासत जो है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खाब वो पाकिस्तानी जमातें क्यों ना हों, खाब वो पाकिस्तानी जमातें यहाँ रख रहे हैं, उन सबको ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने आवाम के लिए यहाँ की सियासत में को सबसे पहले नंबर वन समझे, यहाँ के लोगों को इनवाइट करें जो आइन को समझते हैं, जो यहाँ के तरीकाकार को समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 90% बल्कि 90% ही 99% जिस वक्त हमारे यंग काउंसलर पहली दफा इलेक्ट होते हैं, लोगों को गुस्सा तो लगेगा लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूं, तो उनको ये नहीं पता कि ओम्बसमैन जो होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो यहाँ हमारे कम्यूनों में या अपने मुख्तलिफ वजारों में बैठे होते हैं, वो उनको किस तरह ट्रिकल करना है, उनसे किस तरह हमने सीखना है। वो जब सीख जाते हैं तो 4 साल गुजर जाते हैं या फिर अगली दफा 4 साल के लिए वो इलेक्ट नहीं होते बदकिस्मती से, क्योंकि उनका उनको तजर्बे थे, या फिर अगर वो दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो कुछ अरसे के बाद कहीं अच्छी नौकरी करने उनको मिल जाती है क्योंकि वो सियासत में रहे होते हैं। ये याद रखें कि हमारे लोग मेजॉरिटी जो हैं वो 2 मकासद हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, एक अपने फैमिली अपने इलाके में अपना नाम रोशन करना, हालांकि ये वो ही काउंसलर हैं जो पाकिस्तान में काउंसलर होते हैं और वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, तो इनमें कोई बड़ा फर्क नहीं। असल में बात ये होती है कि आपका कद काठ तब ऊपर जाता है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। चलो पाकिस्तान में तो फिर वो नालियां सड़कें और लोगों को कुछ ना कुछ तो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं होता। यहाँ पे तो एक मिनट के लिए इनके पास टाइम नहीं कि यहाँ आकर, मैं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं आपके रेडियो पे ये बिल्कुल बगैर किसी खौफ और खतरे के ये बात करता हूँ कि देखे कि पूरे डेनमार्क के अंदर बाओ सर्विस जो है वो उलेनिंग के साथ जो है वो उलेनिंग डॉक्टरेट के साथ वो काम करते हैं। सिर्फ जो ये हमारा वेस्टाइन है और कोपेनहेगन, यहाँ के लोगों को नेस्ट विज वहाँ उलेनिंग डायरेक्टोरेट में खुद जाना पड़ता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। ये क्यों नहीं लोग कहते कि हमारे लोगों को जो है ये सहूलत दे?
1: तो शाह साहब इससे पता है कि फिर पाकिस्तान की सियासत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत डेनिश की सियासत से।
2: जी एक दफा फिर कहिएगा।
1: तो शाह साहब इससे तो फिर साबित हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ज्यादा सहूलियात है, डेनिश सियासत में सहूलियात नहीं है।
2: नहीं जी, डेनिश सियासत में सहूलियात हैं अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, आप अपने आप को सही सियासत में देखें। सियासत जो है आप जब अवाम के लिए, 2 किस्म की सियासत है, एक है क्रिमिनल सियासत जिसके अंदर आप कमाई करना चाहते हैं, आप अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने आप का कद काठ ऊंचा करना चाहते हैं। एक सियासत होती है ईमान की जिसके पीछे आप अपने ईमान को पुख्ता करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, आप अपने मुखालफीन जो हैं उनके लिए काम करते हैं, क्यों वो उन्होंने बेशक आपको वोट दिया या नहीं वोट दिया, आपको डाउट हो सकता है कि उन्होंने मुझे वोट डाला या नहीं वोट डाला, लेकिन सब लोग जो होते हैं जो आपके एरिया में रह रहे हैं आप उनके लिए काम करते हैं, तो ये चीजें जहाँ सियासत में।
1: तो शाह साहब चले आते हैं ये टैक्सा की तरफ, ये गाड़ियां जो मैं देख रहा हूँ कि वो इक्की दुक्की गाड़ी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो नई कंपनी आ रही है, नए ड्राइवर आ रहे हैं तो नए मुलाजम आ रहे हैं। शाह साहब इसमें कोई दो रोशनी डालें इस पर।
2: ये बिल्कुल ये ग्रीन जो वियतनाम की टैक्सियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा बंदे जो है वो एनसेट कर लिए रख लिए हैं ड्राइवर। और देखें बेशक ये कानून की खिलाफवर्जी है कि ये 34-35 हजार जो मिनिमम जो इन्होंने 47,000 अगर आप गूगल करें ना तो डेनमार्क ने जो दुनिया को बताया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो तनख्वाह है महीने की वो 47,000 करोड़ है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसलिए

0: अपना रॉस किल्डे से 552 क्राउन के अंदर जो है वो रॉस किल्डे से लुफ्तावन कोपेनहेगन लुफ्तावन में टूर लेके गया और वो भी म्यूर चीज के अंदर। तो इससे बड़ी ज्यादती क्या है? अगर वो वॉन मैन है तो उसको तो 100 करोड़ से भी कम पैसा जो है वो बचत हुई, क्योंकि लागत ही इतनी ज्यादा है टैक्सियों की जो आप ले रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर जो है ना, मैं उनका मशीर हूँ ना मैं उनकी तशरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसने जो है वेकअप कॉल दे दी है और अब लोगों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। जब हम बात करते थे कि
1: इसका फायदा मालकान को होगा या पब्लिक को होगा,
0: इसका कंपनियों को फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। पब्लिक को ये है कि कल एक आया हुआ था पेपर में, बल्कि आज भी आया हुआ था, मैंने आपको कटिंग भेजी ताकि कोई बंदा एतराज करे तो आप उसको वो भेज सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अब आप हेलसिंगोर के अंदर आप खुद जाके टैक्सी को वेल कर सकते हैं, कौन सी टैक्सी आपकी नजर में बहुत सस्ती है और आप उसके अंदर बैठ कर जाना चाहते हैं। आप पहली दो तीन आगे ही होता था, जो पहली गाड़ी है आप उसी को उसी में बैठ के जाएं, लेकिन अब जो टैक्सी स्टैंड पे खड़ी है, टैक्सी है स्टेशन पे खड़ी है, कहीं भी खड़ी है, तो वहां पे आप चूज कर सकते हैं, आप वैल्यू कर सकते हैं कि इस टैक्सी में। तो अब लोग अगर ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ जी, एक कहता है जी मैं 2000 में जाना चाहता हूँ, मैं पीछे से आवाज लगाता हूँ जी मैं 1500 में, मेरे पीछे कोई खड़ा वो कहता है जी मैं 1000 में, तो वो बंदा जो है वो 1000 वाले की तरफ चला जाएगा, वो लेकर टूर चला जाएगा। अब कंपनियों ने ये जो काम किया है इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि इस वक्त 97% पूरे डेनमार्क के अंदर 97% फॉरनर टैक्सी ड्राइवर चला रहे हैं, कैब ओनर भी फॉरनर है। आप यूलैंड में चले जाए, फ्यून में चले जाए, आपको हर जगह फॉरनर नजर आएगा। और ये जो फॉरनर जो है इनके इनसे क्या होगा कल को, ये सारे के सारे जब ये कंपनियां जो हैं ये स्कूलों के बच्चों को ड्राइव करना शुरू कर देंगी, ये इन्होंने तो पैसा कमाना है, ये तो अमीर आदमी है, इनको तो परवाह नहीं, इन्होंने कहना जी ठीक है हम बच्चा ड्राइवर भेज देते हैं। ड्राइवर को क्या, उसको उसने तो वेज लेनी है, उसको तो टूर का उसकी तो उसका मसला ये नहीं कि उसको अब 500 का 1000 का टूर मिले 2000 का टूर मिले, नहीं
1: टूर का मसला नहीं है। शाह साहब हमें शायद नसीम ने भी ज्वाइन किया है, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी इस पर बोलते रहते हैं, इस पर भी बात करते हैं, तो शायद आपको भी एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5-6 मिनट है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि राजा साहब ये होना था, अब हम इसके ऊपर तकरीरें करें, डिबेटे करें, क्योंकि हमारी कौम का ये अलमिया है जो चीज हो जाए उसके ऊपर हम जो है ना तकरीरें करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अभी क्या कहते हैं, शाह साहब ने फरमाया कि 97% या मैं तो बल्कि 99% कहूंगा, 99.5% यानी कि 99.5% पक्ट है इसके ऊपर फॉरनर्स जो हैं वो डेनमार्क में हो जाएं या यूरोप में हो जाएं, खासकर डेनमार्क की जो बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर डेनमार्क के जो फॉरनर्स हैं वो टैक्सियों के ऊपर हैं, कोपेनहेगन से लेके पूरे यूलैंड तक, यूलैंड से लेके पूरे डेनमार्क तक। तो हम कोपेनहेगन की बात करते हैं तो कोपेनहेगन में भी 99% ही है और उसके अंदर तकरीबन 76% या 75% पाकिस्तानी है, बाकी दूसरे गैर मुल्की हैं। पहले गैर मुल्की और जो पाकिस्तानी थे ये भी गैर मुल्की हैं, तो दूसरी जो कौमें थी जिसमें अरबी, तुर्की, कुर्द और जो दूसरे बहुत से वो भी थे इसके अंदर, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए इसको, बहुत से लोग छोड़ गए हैं, बहुत से यंग लोग नहीं आ रहे, बहुत से लोग जो यंग अभी आए हैं जो नए नए आए हैं टैक्सी के अंदर, बिल्कुल यंग जो डेनिश बोलते हैं वो सारे टैक्सी चला रहे हैं, वो सारे उबर चला रहे हैं, उबर ब्लैक चला रहे हैं, सबको पता है, शाह साहब को भी पता है। इसमें आप ये नहीं है कि मैं किसी को कोई टीज कर रहा हूँ या मैं किसी को बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसको आप समझें कि इसका मैं मतलब क्या ले रहा हूँ। तो उसको नए जो आए हैं वो ज्यादातर जो फिर और जो यंग आ रहे हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तानी। अब आ जाए, मैं क्योंकि पूरी तमीज इसलिए बांध रहा हूँ ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। अब आ जाए एस एम ग्रीन ने तो एक पैसा फेंका है, उन्होंने एक ये भी चे मंगवाई है जो हमारे अपने लोग हमारे जो है जिनको पता कोई से बात का नहीं है, जो बहुत से इधर बाजार में चला रहे हैं टैक्सी और ये बातें करते हैं जी वो कुछ नहीं, ये हर बात को यही लेते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी बात को, वो कुछ नहीं होता छोड़ो पड़ा। इन्होंने उबर आई थी तब भी ये कहा था, इतना इनको इन्फॉर्मेशन से दूर है हर चीज से। अगलों ने आपके यहाँ आके जबकि आप लोग क्योंकि ये मार्केट थी, ये जो टैक्सी वॉनमन पाकिस्तानी थे सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे गैर मुल्की थे, इन्होंने ना कोई अपनी फ्रेनिंग बनाई मजबूत, यानी कि

0: यूनियन मजबूत, जैसे डेनिश लोग पहले होते थे उन्होंने बनाई हुई थी, उसके ऊपर पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था कि बाहर से कोई ना आ जाए। और ये बात मैं आपको 2013-14 की बता रहा हूँ, जब उबर ने पहली दफा पड़ाव रखा था डेनमार्क में, तो तब डेनिशों ने, डेनिश वॉनमैनों ने जो स्टैग थी उन्होंने, जबकि तब पक्षनी भी वॉनमैन जो थे डेनिशों से ऊपर ही थे तब भी, लेकिन फिर भी डेनिश वॉनमैन काफी थे, उन्होंने ये अपनी कोशिशों से के जरिए इसको यहाँ से भगा दिया और ये यहाँ से चले गया उबर। और उसके बाद यारी बात है 10 साल फिर आगे, 10 साल बाद वो इसलिए आए कि उन, ये डेनिश लोगों की, डेनिश ही पीछे जो सिस्टम है, डेनिश मैं यहाँ पर जिक्र नहीं भी करना चाहता, उन्होंने इसको तरीके के साथ ले आए जहां उनको देखा कि इसके ऊपर फॉरनरों का गलबा आ गया है और वो किसी करवट नहीं बदल रहा और बस एक ही जगह वो चल रहे हैं, ना उनकी कोई यूनियन है ना स्टैग यूनियन, कुछ भी नहीं है। वो उनको पता था कोई चीज नहीं उन्होंने बनाई हुई, सिर्फ ये अपना अपना सोचते थे सारे ही, मैं खाली पक्षियों की बात नहीं कर रहा, इसमें दूसरे भी अब आ जाते हैं, सबको ले लेता हूँ, अपना अपना सोचते थे, अपनी अपनी दिहाड़ी लगा के अपना अपना करके, तो कहते थे हमें क्या लगे, जहरी बात है बाहर से आके किसी ने वो कहते हैं कब्जा कर लिया है, और वो उन्होंने उन्होंने वो करना था, और वो क्या कहते हैं वो आके वो बिजनेस कर रहे हैं, पहले ऊपर ने किया है, अब वैसे में आ गई है। 600 गाड़ियों का सवाल नहीं है कि 600 गाड़ियां आई हैं वो 1000 भी लेके आ सकते हैं, और ये भी नहीं है सवाल कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते, उनके पास पैसा है, उन्होंने रखा है इसके ऊपर 30,000 कर दिया, अब वो उन्होंने अपने पहले 26,000 से शुरू हुए हैं, 30,000 फर्स्ट उतना है, पहले ये छोड़ा गया मार्केट में क्योंकि मैं तो वहां गया हूँ और भी दोस्त किए हैं, मैंने वहां जाके पूरा वो पढ़ा है, बात की है, और वाकई ऐसे ही है, 30,000 उन्होंने तनख्वाह देनी है और कस्टमर उन्होंने देना है, उनके पास अभी है या नहीं है, आपने अपने 8 घंटे या 7.5 घंटे जो आपके हैं दिन के वो आपने लगाने हैं, उसके बाद जो है ना वो आपको 30,000 मिलेगा, और ओ, उसके पास कुछ ज्यादा काम कर रहा है या एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो उसके कहते हैं डेनिश में ते ओनी, वो बात की बात है, अभी वो 30,000 दे रहे हैं, कामयाब होते हैं या नहीं होते ये कोई ऐसे नहीं है, लोगों वो जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े फंड है, ये फंड होते हैं, ये बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, ये इनके पास ये पैसा नहीं सिर्फ होता, वो कई बिजनेस शुरू किए थे, बिलियनियर होते हैं डॉलरों में, और ये यहाँ एशिया में, ये एशिया से आए हैं, एशिया में ये ऑलरेडी चल रहा है, बड़ा पैसा है इनके पास, उन्होंने इधर फेंका है, यूरोप में फेंका है पैसा, यूरोप के कुछ मुल्कों में, और वो उन्होंने 100% कामयाब होना है, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने डेनमार्क से क्या कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी डेनिश है वो तकरीबन सारी वो ली है, उन्होंने पूरा कानून पढ़ा है, पूरा उसका पहले सर्च किया है कैसे करना है क्या करना है वो सारा करके होमवर्क, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ियां जो उनकी अपनी है वो यहाँ पर लॉन्च की हैं, और 600 गाड़ियां या 800 गाड़ियां ये कोई कोई कोई भी है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उनको पता है, उन्होंने ये एक मार्जिन रखा है कि हमने ये पाया तक मील तक 6 महीने में पहुंचाना या साल तक, वो हर हर हर हर उस क्या कहते हैं जो बड़ी कंपनी को शुरू करती है ना, उन्होंने एक मार्जिन रखा होता है, इसके अंदर हमने ये सारा कुछ करना है, और फिर वो, और ये भी कहा गया है नहीं नहीं जी ये ऊबर उसका मुकाबला है, यार जो भी है आप, और मैं आपको ये भी बता दूं एस एम ग्रीन खुद ही वॉनमैन है, ऊबर वॉनमैन नहीं है, ऊबर में आप वॉनमैन खुद बनते हो, उनका ऐप है, ऐप और छाक साफिया कंग फेमस खालबो हो गई, डैन हो गई, आमा हो गई, जो भी हो गई, वो एक लहदा चीज है, ऐप एक लहदा चीज है, ऐप सब लोगों ने अपना लिया हुआ बना, लेकिन उबर ये एक इंटरनेशनल ऐप है, वो उबर ऐप जो है जिसने बनाया था जिस आदमी ने, उसने वो ऐप बनाने के कुछ अरसे बाद, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में चलती थी वो टैक्सी उबर, उसने वो बेच दिया था, उसको फिर किसी बिजनेसमैन फंड को, बिजनेस जो जो जो रन उन्होंने रनिंग बिजनेस ये खरीद लिया, ये उबर उबर से खरीद लिया जिसने ऐप बनाया था, वो सिर्फ ऐप बनाता था, वो उसको चला नहीं सका था उस तरह पूरी दुनिया में, वो सिर्फ अमेरिका में चल रहा था, उससे खरीद लिया था उन्होंने गालिबन 2008-09 को ये अमेरिका में आया था, 2016-17 को ये खरीद लिया गया था, उसके बाद ये फिर बाहर निकले थे पूरी दुनिया में, ये तो ऊपर की कहानी होगी मुख्तसर। अब एस एम ग्रीन, मैंने फिर कहा कि वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो सारा कुछ होमवर्क करके आए हैं, अब उन्होंने ये काम करना है, और यहाँ से आपकी जो बालादस्ती है, जिसको मैं कह दूं, मैं ये जरादारी नहीं कहूंगा, बालादस्ती जो थी हमारी वॉन मैंने की, वो आपकी इसको ले पॉइंट को मैं, और ड्राइवरों का कुछ नहीं जाएगा, वहां पर जो ड्राइवर काम करेगा वो फर्स्ट लाइन पे काम करेगा, उसको तो फायदा है, कस्टमरों की तो बात जो कहते थे शाह वो तो है ही है, कस्टमर को फायदा है वो तो होना ही है, वो तो ऑलरेडी उनको पहुंच रहा है उबर से भी और बोल्ट से भी, अब इनका मुकाबला होगा वो एक लहदा चीज है, ये प्राइसें कम करेंगे प्राइसें करेंगे, लेकिन ड्राइवर जो उसमें चला रहा है जाके, वो वहां पर वॉनमन आपके खत्म हो जाएंगे,
1: खत्म हो जाएंगे शायद। जरा
0: वो वॉनमन,
1: अच्छा मैं जाने एक से पहले शाह साहब अपना कह रहा हूँ, शायद ये गाड़ियां शहर में पार्क कहाँ होंगी, ट्रैफिक का निजाम कैसे चलेगा, इतनी गाड़ियां आ जाएंगी कोपनहेगन में।
0: जी, मैं ये आपको बताता चलूं कि जब शाक्षा नेऊन थी 2018 तक, तो अब तब वो, आपने ये बार का कहा इतनी ज्यादा गाड़ियों का, तब वो उनके कंट्रोल में थी, डैनिश उसके पीछे थे, डैनिश बड़े वॉनमन पीछे थे, स्टैक फ्रेनिंग थी वॉनमनों की, एक तो ये क्लियर हो गया। तब गाड़ियां आपकी होती थी 1500 से लेकर 1800 तक रोड के ऊपर, वो उसका मतलब था कि वो हर साल या 2 साल या साल के बाद स्टैटिस्टिक देखते थे कि कितने कस्टमरों की हमें जरूरत है। और उस वक्त शाह साहब को पता था, जब वो चलाते थे तो वो एक ग्रीन रंग का एक बिलिंग नंबर होता था, वो आपको मिलता था और क्यू में आप लगते थे, और तब ये हमारे पक्ष से नहीं, हम लोग रोते थे यार सन बिलिंग नहीं मिलता, वो पागल थे, क्यू में लगे थे, बिलिंग क्यों दें, बिलिंग इसलिए नहीं वो देते थे कि आपको जरूरत नहीं है भी रोड के ऊपर, गाड़ियां ज्यादा हो जाएंगी। जब आप देखें इस टाइम अभी उसकी, उसको ग्रीन को छोड़ दें, वो भी 10-15-20 गाड़ियां रोड पे अभी आई हैं अभी 2-4 दिन पहले, और पहले उसको भी पीछे रखें, इस टाइम 4300 गड्डी है पार्टी कोपनहेगन दे विच, डैन टैक्सी उबर और ड्राइवर और आमा और ये बोल्ट और ये सारा कुछ, ये अपना खेपना चक्स मिला के आपकी तकरीबन 4300 गड्डी है, और हर रोज मुंशेरिंग होके आपकी 10 से 15 गाड़ियां रोड के ऊपर आ रही है, क्योंकि वो ओपन कर दिया हुआ है, और उसमें ज्यादातर, फिर मैं कहूंगा ज्यादातर पाकिस्तानी यंग जनरेशन है जो आ रही है। ये किस काम पे लगा दी है आप यार, डनवारक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये यंग है, चलो शाह साहब की समझ आती है मुझे, चलो मुझे किसी और 60 साल के या 50 साल के बंदे की जो काम कर रहा है उसको भी समझ आती है। मैं ये अब तंज नहीं कर रहा, मैं ये अपनी कौम को बता रहा हूँ कि यंग जो लोग हैं कि ये कोई फ्यूचर नहीं है अब आपका, देख लिया अब आपने, ये अब ग्रीन एसएमबी आ गई है, उसके नीचे लाके आप काम करेंगे, टैक्सी चलाएंगे, जो बड़े चला रहे हैं ठीक है उनके पास कोई वेल नहीं है, कोई पेंशनिस्ट चला रहा है कोई वेल नहीं है, लेकिन ये जो यंग हमारा तबका जो देखा है, शाह साहब ने भी देखा है, मुझे भी पता है, शाह साहब को भी पता है, आया है, मैं देख के हैरान हो गया, मैं यार ये डेनिश बोल रहा है, अच्छा भला लड़का है 24-25 साल का, फुल काम कर रहा है, क्या हो गया इनको। उसके बरक्स यहाँ पर आपके बंगाली हैं, उसके बरक्स आपके इंडियंस हैं, यहाँ पर सिख है कम्युनिटी, श्रीलंकन है, नो वे कोई नहीं, जो पहले थे चंद, शाह साहब को पता है जो चला रहे हैं 20-25 साल से, वो कुछ हैं कुछ चले गए हैं, और ये नया कोई नहीं आया, उस जो दूसरी जो ओवरसीज हैं, जो दूसरे मुल्कों के, और उसमें बालकन के और मैकडोन, योगोस्लाविया और मैकडोन, ये बहुत ज्यादा थे चलाते, ये भी नए कोई नहीं आए, ये भी निकल गए हैं, लेकिन हमारे तो कहते हैं कि असी ना टैक्सी छटनी है ना असी पिज्जा छटना है, यार कोई आगे बढ़ो, कोई पाकिस्तान को भी कोई नाम हो, नाम ही कोई नहीं है आपका कहीं भी, डेनमार्क में तो फिलहाल कोई नाम नहीं है किसी का,
1: लेकिन इसमें यह भी शामिल करना था पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छेड़नी।
0: वो तो चलो एक वो पाकिस्तानी सियासत भी नहीं छोड़नी, ये भी ठीक हो गया, चलो शाह साहब को मौका दें, उनको भी
1: शाह
0: जाना
1: साहब
0: होगा,
1: आपने शायद की बातें सुनी, उसने बड़े तफसील से बातें बताई, आप करते भी रहते हैं, आप क्या कहेंगे शाह साहब?
2: जी, मैं तो बिल्कुल बहुत खुश हूँ शायद की बातें सुन के, कि मेरे बात अगर कोई यहाँ पे अपनी आवाम को कोई एजुकेट कर रहा है तो वो ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। देखें अब फ्यूचर क्या हो गया, हम फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर ये हो गया है कि जैसे ग्रीन टैक्सी ने ड्राइवर जिन जिनको शौक है गाड़ी चलाने का उनको फिक्स पे कर दिया है। अब जब ये फिक्स पे हो गया तो इसमें ड्राइवर को वाकई ही बहुत ज्यादा सहूलतें मिलेंगी, लेकिन जो जो फ्यूचर डार्क हुआ है वो हुआ है उनका, जिन्होंने वॉन में अपने आप को वॉनमैन समझते हैं लेकिन वो वॉनमैन नहीं है, उनको एक ठिलेल से एक इजाजतनामा मिला हुआ है, जैसे कि हमने 10,000 दफा बताया है कि जैसे आप इंश्योरेंस ठिलेल से लेते हैं कि भाई मुझे नंबर प्लेट चाहिए, मैं आपके पास इंश्योर्ड हुआ, और जिस दिन आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो वो पुलिस को कह देते हैं, उसी वक्त आपकी गाड़ी को रोक कर वो नंबर प्लेट उतार देते हैं, आपका ठिलेल खत्म हो जाता है। ये जो नया उबर कानून बना था, शायद मैं आपके लिए भी ये आपको बात बता दूं कि मैं इस चीज के मुखालिफ था कि उबर यहाँ से बाहर जाए, मैं ये कहता था कि उबर को यहाँ रहना चाहिए, अब वो आ गए हैं, ये अमीर आदमी है, इन्होंने सियासतदानों को भी खरीद लिया, इन्होंने मार्केट को खरीद लिया है, तो आप इनको रहने दें, इनकी मुखालफत ना करें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वोमेनशिप जो है जो, तो आपके पास जैसे लंदन में ब्लैक कैब चल रही है, जर्मनी में चल रही है ऐसी, तो मैंने कहा वो उसके साथ उबर भी चल रही है, दूसरी कंपनियां भी चल रही है, तो आप ऐसा करें अपनी वोमेनशिप जो है पुरानी इसको रखे और बकायदा कम्यून जैसे हुए वन नेवन देती थी हुए वन नेवन रहे, और वो जो है वो जो बिविलिंग्स है या वो टिल्यालसा जो है वो इशू करे। लेकिन इन्होंने ओपन मार्केट कर दी, हम लोग लालच में आए कि हम तो बहुत ज्यादा गाड़ियां रखेंगे, उनको बेचेंगे और इस तरह, लेकिन आगे से उल्टी जूती जो है वो हमारे चेहरे में पड़ गया। मैं 50 साल से ऊपर मैंने टैक्सी चलाई है डेनमार्क के अंदर, और मैं तो इस चीज से दुखी हूं कि उस वक्त एक वॉनमैन जो था, एक कैब ऑनर जो था, उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट थी स्वाय अदालत के, उनका वो ग्रीन नंबर प्लेट कोई फ्यान नहीं कर सकता था। अब जो है ये सिर्फ जो जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं वो जिस वक्त दिल चाहे बंद कर दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये डैनिश कानून है। तो सबसे बड़ी शायद इन्होंने ये बात की कि जब ऊबर को इन्होंने कहा कि आप ऊल ऑडिट हैं और आप यहाँ से चले जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो उस वक्त उबर जो थी वो ड्राइवर के रंग में यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही थी, और उसके बाद दूसरी सेल्स के भी इसी तरीके से ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। ये इनकी मन पर इन्होंने क्या किया कि ट्रैफिक मिनिस्ट्री ने उसी दिन जिस दिन उबर को बैन किया गया, उसका हाइब्रो प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल जो है को बंद किया, उसका जो डायरेक्टर था वो ट्रैफिक मिनिस्ट्री में उसने जॉब ले ली, और वो उसको डायरेक्टर टिल्सियन, ट्रैफिक टिल्सियन का जो था उसको अपना डायरेक्टर बना दिया गया। उसके नीचे ये सारे लॉस वोन और ये वाव वोन और ये सारी टैक्सी सेल्स के उसके नीचे आती थी। उसने कानून ही ऐसा बनाया, फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको 2019 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक हम आपको ये देते हैं कि अगर आप वॉनमैनों को इस कानून के को पसंद नहीं तो आप आए हमारे साथ बात करें, हम इसको चेंज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें यह कानून ज्यादा मंजूर है, क्योंकि अब हर कोई आदमी जो है वो टैक्सी ले सकता है। तो उसकी वजूहत जो है वो अब सामने आ गई है, और अब बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पे मैं तो अपने जितने पुराने वॉनमैन चल रहे हैं या नए यंगस्टर, उनको ये कहूंगा कि खुदारा मत बने बोनमैन, बल्कि आपको अगर फास्ट जॉब मिलती है, शोफर मिलती है, तो वो आपके लिए ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड अप हुई, नए कानून में आप फंस जाएंगे और वो आपकी टैक्सी भी जब्त कर लेगा, और बहुत सारे बोनमैनों की यहाँ टैक्सी जब्त भी हुई है, तो वो आपको लॉस होगा, आपको इकोनॉमिकली लॉस होगा। यहाँ आपने शौक पूरा करना है, जाए फिक्स तनखा ले, अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो वो आपको बोनस भी देंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये जो ग्रीन टैक्सी आई है, मैं इसकी हमायत तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे ड्राइवरों के लिए बहुत ही महफूज है।
1: और मियां मुनीर साहब बड़ा तजुर्बा है, एक ब्रांच के ये दो बार जो है वो चेयरमैन रहे, सदर रहे, और उनको वसी तजुर्बा है पिछले कितने दहाइयों से। मियाँ साहब आपको अदर आपकी आवाज़ पर एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आप यंग सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं।
3: जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया रहा साहब, सबको बहुत बहुत सलाम,
2: वालेकुम सलाम को
3: सुनने वालों को। मेरे मोहतरम शाह साहब, मैं पिछले कोई आधा मिनट सुन रहा हूँ इनकी गुफ्तगू, आपका मौजू मैं समझ गया हूँ स्टार्ट में, दोबारा आप सबको बहुत बहुत सलाम, अल्लाह ताला सबको खुश रखे।
1: शुक्रिया मियां साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा इस फील्ड में, नई एक आ गई है टैक्सी, इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, ड्राइवर को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा, शहर में ये गाड़ियां आ जाएंगी, पार्किंग के मसाइल होंगे, क्या ये जो जॉब मिलेंगे ये पक्के जॉब होंगे, ये ना दो दिन किया तीसरे दिन निकाल दिया। तो मियां साहब ये जब चीज़ें आती हैं, ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर मुलाजमत इख्तियार करता है, तो बहुत सारे हकूक भी होते हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी मियां साहब आप बताएं हमारे सामने नाज़रीन को।
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ट्रांसपोर्ट टैक्सी बसेस जो भी पुराने जमाने की चीजें एक ठंग से लेकर और अब जो चीजों में तब्दीली आई है, इतना मॉडर्न जमाना। हमने खुद टैक्सी फील्ड में जो देखा शाह साहब ने, मैंने कि किस तरह की गाड़ियां थी, कौन से उसमें सिस्टम थे, रेडियो सिस्टम था, डिजिटल सारा कुछ है, आईटी कंप्यूटर सारी चीजें, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी सहूलतें भी हम इंसानों के लिए। अब टैक्सी की जो बात कर रहे हैं, टैक्सी एक जरूरत है और चलती आ रही है और चलती रहनी है, इसमें वो दूसरी कोई बात ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट, इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक हो चुका है, कभी भी इतनी टैक्सी नहीं इस्तेमाल होती थी जितनी अब होती है, कभी भी इतना क्या कहते हैं आप ट्रेवलिंग नहीं होती थी जितनी आज। अगर आप देखें फिगर जो आप पढ़े किसी भी एयरपोर्ट के, कोपेनहेगन एयरपोर्ट के, तो एक एवरी मंथ एवरी ईयर आपको उसमें बहुत बड़ा इजाफा मिल रहा है, इसी तरह टैक्सी इस्तेमाल करने वालों में। डेनमार्क में मैं बिल्कुल इस फील्ड में बहुत पुराना हूँ, शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैंने पहले दिन से इनके साथ टैक्सी शुरू की थी। और टैक्सी में यानी के जैसे मैंने पहले अर्ज की कि कितनी तब्दीलियां आई, बहरहाल इन जो फिगर की हम बात करेंगे, नया जैसे एक ग्रुप आया उसकी बात करेंगे, तो फिर इस तरह ही है कि कोपेनहेगन में किसी जमाने में 1800 और कभी 2100 फिर 1800 फिर 1850 इस फिगर में बहुत अरसा टैक्सीज रही। वो जरूरत थी, वो कंट्रोल था, वो निजाम था, ये 13 कमूनों जो है इनका। फिर वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीली आई, आज से कोई 5-7 साल पहले यहाँ ऊबर आई या 4-5 साल पहले। डेनमार्क का एक टैक्सी सिस्टम है, एक कानून है, पहले भी इस पर बात हुई है और आज भी है। अब आज भी ईयू से हटकर बाकी लोगों से या मुल्कों से हटकर डेनमार्क का एक अपना शख्सी लॉ है, जो उसे फॉलो करे उसमें तब्दीलियां आई हैं, जो उसे फॉलो करेगा वही यहाँ टैक्सी चला सकता है और उसमें कुछ बिल्कुल कंडीशन है। लेकिन जो हुआ ये है, मैं अनफॉर्चुनेट कहूंगा बदकिस्मती से, उसमें जो तब्दीली आई उसमें ये मसलन ऊबर यहाँ आ गई, बोल्ट यहाँ आ गई, अब ये नई जो कंपनी आई इसकी हम बात करेंगे। इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं, मैं कल की बात करता हूँ, मैंने कल मैं यानी के कल शाम को टैक्सी मैंने चलाई है, मैंने देखा है कि रोड पर जब इंसान हो उस फील्ड का हो तो फिर वो देखता कि क्या हो रहा, यानी कि सर्विस किस तरह दी जा रही है। और शाह साहब आप देखें कि हुवाक्स गेट उसे कहते हैं, काफी भिक्षा उसके सामने मैं हूं गुजर रहा हूं, तो दो तुर्की खड़े हैं एक लाइन में, जनाब इस तरह हो गई निकल गई मुंह से बात, कोई भी हो सकता था, उन्होंने मुझे रोका। तो एक बंदा जो उनके साथ जाना चाहता था वो मुझे कहते हैं कद्दश आप ले जाओ, इसलिए कि वो छोटा टूर था, इस तरह नहीं होता था पहले। ये जो चीजें मैंने इसलिए मिसाल दी कि अब वो लोग जो ना सर्विस माइंड थे ना उन्हें वो उस कानून या उस निजाम को समझते हैं या समझना चाहते हैं, अब वो फील्ड में आ गए, अफरा तफरी फैल गई है। जिन लोगों ने इसे एज एक बिजनेस, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, एक अच्छा निजाम बनाया था इस मुल्क के अंदर, उन चीजों को वायलेशन भी की जा रही है, उनमें बहुत सारा अपना भी वो नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये यहाँ के पॉलिटिशियन ने, आप बिल्कुल बात करते रहे, मैं सुनता रहा, मैं भी जानता था, मेरे पर एक जिम्मेदारी भी रही, हमने देखा कि यानी कि यहाँ जिस तरीके से ये दूसरी कंपनीज आई है उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, वो पेपरों पर तो वो पूरी कर रहे हैं जो यहाँ का वो हमारा टैक्सी लॉ है, जिसके लिए ड्राइवर के लिए कंडीशंस हैं और वन मैन बनने के लिए। लेकिन इन साइड मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत सारी दो नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, गलत हो रहा, ड्राइवर सर्विस माइंड नहीं है मोस्ट ऑफ देम, मैं कहूंगा थोड़े नहीं बहुत सारे। अभी हमने देखा रॉस्किल फेस्टिवल था, मैं भी फील्ड में था, कि यार देखें कि मिसाल के तौर पर, फिर मैं मिसाल अपनी देता हूं कि एक बंदा मेरे पास आया मुझसे 11 लोगों से पहले जाकर, थोड़ा सा पाज था, स्टिक के साथ चलता था, पहले 11 लोगों ने उसे बिठाया नहीं गाड़ी के अंदर, अपनी टैक्सी के अंदर, इसलिए कि उसने वहां से रॉस्किल स्टेशन पर जाना था जो लेस देन 100 क्रोन का टूर था। सो ये चीजें जो है ये है वो कि जो बेतरतीबा और बगैर कोई यानी के सिस्टम को सही मेनू में वो ऑर्गेनाइज करने की या बनाने की कोशिश या एक सिलसिला था, उससे हटकर चीजें चलेंगी।
1: अब इसका हल बताएं।
3: इसका हल ये है कि इस इन चीजों में यानी कि हम तो अपने कंपनी के अंदर भी बात कर रहे हैं, टैक्साफिया का फेमस हाउस जो है उसकी तो एक कंडीशन है अभी तक, ड्राइवर जो है एक तो अथॉरिटी की तरफ से आपको लाइसेंस जो लेना है, फिर वो जो हमारा फेयर कोड होता है, उसके बाद शाह साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं, हम खुद टैक्सा के अंदर एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हर ड्राइवर को और ड्राइवर ही पहले बनता कोई या वॉनमैन बनने से पहले भी सेम कंडीशन है कि वो यानी कि पहले टेस्ट देता है जिसमें जुबान का होता है, कम्युनिकेशन जरूरी है, हम डेनमार्क में रहते हैं, डैनिश आनी चाहिए, और दूसरा जो है वो उसे कोरस करवाया जाता है जिसे कि आपने किस तरह हैंडल करना है, सर्विस देनी है। ये तो थी वो, और मैं भी अपनी कंपनी की कोई मशहूरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम यहाँ। अब मैं जो थोड़ा सा सुना आधा मिनट वो था शाह साहब वो ग्रीन MS जो है टैक्सी उसके बारे में बात कर रहे थे, उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, एक नई चीज है वो जो आप देख रहे हैं इस वक्त गाड़ियां आ चुकी हैं रोड में। मैं पिछले दिन भी कहा था मेरी वर्कशॉप की सेकंड गली में उनकी गाड़ियां तकरीबन 250-300 गाड़ी पार्क है, पूरी तौर पर तैयार है, अभी उन्हें ड्राइवरों की कमी है, ड्राइवर वो अब पाइपलाइन में होंगे तो फिर ही वो आएंगे ना जो मतलब गाड़ी चलाएंगे उनकी, पर वो काफी कोशिश में है, आ जाएंगी, कोशिश उनकी बहुत सारी है कि, और उन्होंने तनख्वाह वगैरह फिक्स और वो अच्छी अमाउंट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ सारा सिस्टम, लेकिन ओवरऑल ये क्या होगा? उबर का किसी को पता था आज से 20 साल पहले उबर शुरू हुई अमेरिका में, वो यूरोप में आ गई, इंग्लैंड में उसने यूरोप में सबसे पहले आए, आस्ता आस्ता फिर आज यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर मुल्क में चल रही है। उसके पीछे कौन है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने सिस्टम को मार्केट को कैचर कर लिया। आस्ता आस्ता यानी कि होगा यही कि वो सारी सिस्टम को कैचर कर लेंगे, फिर वो सर्विस जो मैंने कह दी है पहले जो इस वक्त चल रही है, और फिर यानी कि वो मार्केट को कैचर करके फिर ना वहां डिस्काउंट रहेगा ना वो सर्विस रहेगी, सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि कितनी गाड़ियां हैं और कितनी परसेंटेज वो लेंगे, जो आज वो लेट्स है 15% ले रहे हैं, कल को वही 25% लेंगे जो किसी और ने नहीं पे करनी, मैंने और आपने एज ए कस्टमर पे करनी है। इसी तरह एक बंदा जो वियतनाम का है जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास इतना पैसा होता है उन्हें पता नहीं कि कहाँ क्या उसे किसी ने आइडिया दिया है, उसने जाकर एक कंपनी से एक कोरियन कार खरीदी है जो डेनमार्क की टैक्सी का मतलब है कि कार साइज जो कंडीशन है वो भी जरूरी है वो पूरी करती है, वहां से उसने बहुत बड़ा फेयर लिया है, फिर वो सबसे पहले उसने शुरू ही दुनिया में कहीं और नहीं है ये ग्रीन टैक्सी, उसने एक आइडिया अपना बनाया कि यूरोप जो है उसके अंदर मैंने जाना क्योंकि यूरोप का एक सिस्टम है, यहाँ एक जिस तरह क्या कहते हैं एक निज़ाम चलता है, निज़ाम जिंदगी चलता है जिसके उस जिसकी जरूरी जरूरियात है, उस मार्केट में उसने जाना। वो हॉलैंड पहले गया, वहां के कानून जो है उसे इजाजत नहीं मिली, तो उसने जाहिर प्रोफेशनल तरीके से उसने पढ़ा कि ये डेनमार्क की चीजें जो है ना पूरी कर सकता हूँ, यहाँ जरूरत भी शायद है, तो उसने डेनमार्क आकर अप्लाई किया, उसे इजाजत मिल गई है। अब वो टैक्सी जो यहाँ 600 टैक्सी की तैयारी में फिलहाल जहां तक मुझे पता है 400-350 गाड़ी जो है वो तैयार खड़ी है, जिनमें से अभी तो चांदे की चल रही है, हमें पता आ जाएंगी वो भी रोड पर।
1: लेकिन मियां साहब ये कोपनहेगन में होगी, पार्क कहां करेंगे?
3: पार्क जो टैक्सी पार्क होगी रोड पर नहीं चलेगी, वो तो बहुत बड़ा घाटा होगा, नुकसान होगा। इन्होंने चलना है टैक्सियां तो मतलब पार्क तो फिर यानी के थोड़ी देर के लिए वो घूमे फिर रहे हैं, जैसे हम घूमे फिर रहे हैं, टैक्सी स्टैंड है, बुकिंग हो रही है। होता ये है राय साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चले आज आराम से बात कर लेते हैं। कोपनहेगन टैक्सा की जो हमारी गाड़ी है ना, मसलन लेट्स से 800 है, वो 800 पार्क नहीं होती, उनमें से लेट्स से 200 गाड़ी पार्क होती है मुख्तलिफ घरों में, जैसे मेरी बार खड़ी है, बाकी जो है वो रोड पर होती है, जिनमें से लेट्स से 60% जो है जो चलती हैं वो बिजी होती हैं, कस्टमर के साथ है। सो गाड़ी याद रखें, गाड़ी जहाज और वकील, वकील का कैलेंडर बिजी रहे, जहाज जो है ग्राउंड पर ना हो, और टैक्सी जो है वो कस्टमर के बगैर अगर खाली चलती हो तो नुकसान ही नुकसान है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ।
1: मियां साहब ये तो कारोबारी बात होगी ना, लेकिन उसने दाएं बाएं मुड़ना भी है तो बाकी ट्रैफिक भी होगी, ट्रैफिक के मसाइल कैसे होंगे?
3: देखें ट्रैफिक के मसाइल तो फिर जिसे हम कहते थे कि कोपनहेगन एक बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें वो लंदन पेरिस की तरह बाकी मुल्कों की तरह ट्रैफिक नहीं होती, यहाँ यानी के बड़ा एक सिस्टम बड़ा मतलब ईजी चल रहा है, माहौलियात सारी चीजें बड़ा कंट्रोल है, तो वो तो चीजें फिर जाहिर है ट्रैफिक में नहीं रहेंगी, बिजी आवर में तो बहुत ज्यादा आप भी हम महसूस करते हैं। तो बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो ये चीज़
1: चलिए मियाँ साहब आपका वर्जन आ गया, शायद आपने बातें सुनी मियाँ साहब की, शाह साहब की भी, शाह साहब की भी तरह चलेंगे, क्लोज करेंगे बाद में वो, तो शायद आप किस तरह देख रहे हैं मियाँ साहब की बातों को, कोई और क्या इजाफा करेंगे आप?
0: राजा साहब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका मुझे सवाल एक समझ आया थोड़ा सा मेरी भी जेन में, कि आपने कहा पार्किंग कहाँ होगी, वो छोड़ो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। एवेदो हॉलमन में जहाँ पर मियां साहब का दफ्तर है उसके करीब ही कैनल हॉलमन है, उधर है इनका बहुत बड़ा, जहाँ पर इनकी 600-400 या 350 गाड़ियां खड़ी हैं, इससे ज्यादा भी खड़ी हो सकती हैं, और उसके बाद जो इन्होंने जो प्राइवेट पार्किंग जो उनकी अपनी है वही उधर भी 200-300 गाड़ी खड़ी हो सकती है प्राइवेट, अंदर टैक्सी है, तो जैसे ग्रिल के अंदर जो फोर्ट बना हुआ है, जैसे फोर्ट खोलता है उसके बाद टैक्सी उनकी पार्क है, उधर पार्क करनी है आपने टैक्सी, जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी जिस ड्राइवर ने काम खत्म करना है गाड़ी उधर पार्क करनी है, और उसके बाद अपनी गाड़ी वहां से अगर लाया होगा चला के ले जानी है, और स्टार्ट में ये भी है कि इफ द आउच है अगर उनके पास ड्राइवर नहीं है अभी गाड़ियों में, तो वो गाड़ी अपने घर लेके जा सकता है, वो उसका पहले उसे पूछना होगा घर किधर है, किस नवयत का है, और वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये सारी बातें उन्होंने की थी, और स्टार्ट में जो एक गाड़ी के ऊपर एक शोफेर है तो वो फिर गाड़ी घर लेके जा सकता है और गाड़ी को जो है ना उसकी देखभाल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उनकी बातों से मैं मुतफिक हूँ, जहरी बात है वो इस ब्रांच से 40-45 सालों से मुंसलिक है, लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये आपकी मैं फिर बताऊंगा 6 साल ने उनके खत्म होने के बाद हुई हैं, या इसको खत्म करवाया गया है जैसे भी करवाया गया है, अगर वो खत्म ना होती तो आज इसका रिजल्ट कुछ और होता। और उस वक्त मुझे याद है मेरे वाले साहब भी बताते थे, हम छोटे होते थे बताते थे कि यार वॉनमैन थे वो भी, तो वो बताते थे कि 1600 गाड़ियां हैं, 1800 गाड़ियां हैं, 1700 हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा 2100 हुई, तो तब और उनके कंट्रोल में इसीलिए था कि आपकी 13 कमोने थी कि इस तरह का जो है जो जो वो गांधना मच जाए। छोटा सा शहर है, छोटा सा मुल्क है, और आज देख लें 4000 के करीब गाड़ियां हैं इस वक्त, और उसमें और गाड़ियां भी होने जा रही हैं, और ये सारा खुद कुछ बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया है। कैसे किया है ये अभी शाह साहब ने भी बताया कि उन्होंने शुरू से ही ये तैयार कर लिया था, जो बंदे थे इसके अंदर डेनिश कुछ इन्वॉल्व, जैसे बताया कि हर मुल्क में हर चीज होती है, यहाँ पर जो है मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से गायसा करा के दो दो पांच पांच लाख के गैसे भी होते हैं, वो गैसे इस तरह के करवा के प्यार मोहब्बत के अंदर सारे काम लिए जाते हैं, और ऊबर ने ऐसे ही पैसा फेंका है। मेरी बात को आप जरा कहते हैं फॉलो कर जाएं। और इसी तरह जो दूसरी आई है ये भी ऐसी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ आप बड़ी चीजें करवा लेते हैं उसमें। ये हमारे मुल्कों की तरह थोड़ा होता है कि वो डायरेक्ट ही हो जाए हर चीज में, तो वो फिर आपको जो है सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जब चीजें होती हैं तो वो प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने करना था, और उन्होंने ये मोनोपोली खत्म करनी थी। डेनिश कुछ लोग थे, कुछ लोग इसके पीछे हैं, वो ये चाहते थे कि ये वोन मैनी की जो है ना फॉरनरों के हाथ से खत्म की जाए। इसमें हम माने वो कुछ लोग थे जिन्होंने ये करवा के, पर वरना उनको क्या जरूरत थी कि बाहर से गाड़ियां लेके आए, कभी उबर आ गई कभी आ गई। इसकी तो हम अच्छा भला चल रहा था, इसकी मतमल नहीं थी। उन्होंने देखा यार इतने 97% 98% फॉरनर हो गए हैं, 80-90% वोमन सारे फॉरनर है, और ये पैसा सारा इनको जा रहा है। इसकी तकलीफ थी डेनमार्क में, खासकर मैंने ये देखा है दूसरे यूरोप के मुल्कों की बनिस्बत। मेरी ये राय है, हर की अपनी अपनी राय होती है, यहाँ पर वो एक लिमिट तक किसी फॉरनर को अमीर होने की इजाजत देते हैं, और ये इनका सिस्टम है। वो फिर सिस्टम हरकत में आ जाता है, वो उसके मुताबिक वो फिर वो सिस्टम जो है ना उसको करता है फॉलो, क्योंकि ये आपको कि आगे
1: तो शायद
0: एक
1: क्या
0: मैं
1: ये आप लोगों के सिस्टम में भी कोई मीर जाफर मीर सादक थे?
0: ये तो मियाँ साहब बताएंगे बड़े हैं।
4: मैं राय साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे बरखुरदार शाहिद भी हमारे साथ है। मैं शाह साहब की, मैं तो अभी उठा ही हूँ, जो सच्ची बात है, ये साथ में गर्म पानी पी रहा हूँ, आपने मैसेज लिखा तो हम हाजिर हो गए। शाहिद आपको बहुत बहुत सलाम,
0: जी मियाँ साहब, थैंक
4: मैं
0: यू।
4: आपको सुनता रहता हूँ, आपका तजिया, आपके जज्बात, आपकी सोच, मैं बहुत ज्यादा उसकी कदर करता हूँ। आप एक दलेर इंसान हो, हमेशा दलेरी के साथ बात करते हो, लॉजिक और पढ़े लिखे इंसान हो। मेरे तो आप बेटे भी
1: मियाँ
4: हो,
1: साहब
4: छोटे
1: हमारे
4: भाई।
1: शाह साहब उस दिल हैं।
4: नहीं, शाह साहब तो हमारे बड़े हैं, ऐसे ना करें। ये जो ना, ये जो शिक्षा का आप ना किया करें, मैं उस बरखरदार की, शाह साहब के हाथों मैं जवान हुआ हूँ, वो कहते भी होते हैं
0: राजा
4: शाह
0: साहब,
4: मेरे।
0: राजा साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब की जो गोद नहीं है उसके ऊपर मैं, उन्होंने मुझे खिलाया हुआ है, पूछ लें अभी
4: मेरा
0: जाके।
4: ये मुझे फखर है, इस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद मिलते तो हम अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे इस बात पर फखर है कि शायद जो है ये मेरे हाथों में बड़ा हुआ है, ये मेरी गोद में ये खेला है। ग्लेर सक्स वाय मेरे अंकल और इनके वालिद, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे। मेरे वो बड़े भी हैं और हमने इकट्ठे इस फील्ड में काम किया है, शाह साहब भी जानते
1: अच्छा, अब
4: हैं।
1: मुझे पता चला
4: शायद
1: जी इतना समझदार क्यों है।
4: बस मुझे वो पीरों से, मेरे पीर हैं शाह साहब, उनसे ये क्या कहते हैं कि ये मिला सारा कुछ। शायद सबसे पहले तो इसके माँ बाप, जो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, और उसके बाद ऐसे ही होता है। और हम जैसे जो दरमियान में, आप जैसों के साथ लड़के रहे तो फिर पीछे रह गए, बात तो कुछ इस तरह ही है। शायद आपने बिल्कुल ठीक बात की है, और राजा साहब ने दो तीन दफा पार्क की बात की है। अब राजा साहब शॉर्ट ये करता हूं कि जो डेन टैक्सी है, ये ग्रीन वाली, इनकी तकरीबन 1600 गाड़ी हो चुकी है डेनमार्क में इस वक्त, प्लस इससे भी प्लस है मेरे ख्याल में, मैं आखिरी फिक्र नहीं जानता। लेकिन आपने देखा उनकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, बात पार्किंग की नहीं है, बात टैक्सी सिस्टम की है। टैक्सी एक जरूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरत है। उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा था, जो निजाम चल रहा था, जो सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए कुछ कंडीशन थी, उनको किस तरह वायलेशन उस पर में हुई है, और बाहर से आकर कंपनियां, उन्होंने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को कैचर कर लिया है। पहले एक ऊबर था, फिर एक बॉल्ट था, अब एक तीसरा फार ईस्ट से आकर एक कंपनी जो है उसने यहाँ डेरे डाल ली। ये है हम लोकल्स के लिए, हम हमारे लिए एक एक प्रॉब्लम। और शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे ही है। अब मैं कल कुछ लोगों के दरमियान था जो जिनका तीन चार का कियोस्क के साथ तलक था। आपको पता क्या हाल है उनका? यानी कि बहुत बुरा हाल है। क्यों? कि ये सारी ठीक है ओपन, मैं कहता हूँ शायद कि जो चीज पब्लिक के लिए इजी हो, पब्लिक के लिए अच्छी हो, वही होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप कुछ लोगों पर कंडीशन लगा दें, दूसरों को आप रिलीफ दे दें, या निजाम इस तरह बना दें कि वो उनका सारा कुछ जो है वो जाता रहे और दूसरे सारा कुछ लूट कर ले जाए। मैं ये सोच है जी।
1: मियाँ साहब आपने बात की, शाह साहब आपकी तरफ चलते हैं। शाह साहब, मियाँ साहब आपकी सरपरस्ती में, आपकी गोद से निकले, मियाँ साहब की सरपरस्ती में शायद गोद से निकले, तो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। ये 40-35 साल का जो तजुर्बा, ये बड़ी चीज़ होती है। ज़ाहिर जब किसी इंसान के पास तजुर्बा होता है, उसने 30-40 साल पहले की जो चीज़ें हैं वो देखी होती हैं। नए आने वालों ने तो फिर वो 30-40 साल लगाएंगे तो वो देखेंगे। तो शाह साहब, इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं?
2: देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक आपको सच्ची इंफॉर्मेशन दूं कि जब मियां मुनीर डेनमार्क में आया था, ये बच्चा था और इसने अपने बचपन में डेनमार्क की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखा और बड़े इस समफोन को इसने समझना और सुनने के लिए इसने हर आदमी जहां पे भी ये एक्टिव हुआ, सोसाइटी हो या डेनिश प्रोग्राम हो, वहां इसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये इसकी अपनी काबिलियत है और इसने सीखा है और ये सीखने से आज ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। अब मैं शायद को एक बात बताना चाहता हूँ। शायद देखें, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त 70s के अंदर यह था कि डेनिश लॉ यह था कि तुम वो एक है मेदर इन वन मैन स्केल, एक है मेदर टू विविलिंगा ना। अच्छा, ये पूरे डेनमार्क का कानून था जिसके अंदर खाई ओल्सन ने उस वक्त सिग्नेचर किए हुए थे और ये लॉ जो था वो ये ट्रैफिक मिनिस्ट्री की तरफ से था। लेकिन पूरे डेनमार्क के अंदर आप यूलैंड में चले जाए, वहां पे भी दो दो वनमैनों के पास गाड़ियां थी। लेकिन कोपेनहेगन के अंदर जो थी, मियां मुनीर साहब को पता है कि यहाँ पे टाक्सा मोटर में, दूसरी जगह कोडन में, आगे पीछे एक एक वनमैन के पास 50-50 गाड़ियां भी थी, 40-40, 30-30 गाड़ियां भी थी। तो यहाँ पे मोनोपोली थी और ये चीज वो वाजिया कर रही है कि यहाँ पे क्रिमिनलिटी जो है वो, जैसे आपने कहा कि राइजे ये सब कुछ यहाँ पे होता है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जैसे आप यंग हैं, मियां मुनीर हैं, ऐसे और चंद एक दोस्त मिलके इन सारी चीजों को, मैं आपको सबूत देने को तैयार हूं, आप लोग आगे जाके एक्टिव हो, तो आज भी ये कानून जो है कोपेनहेगन टाक्सा जो इस वक्त बची हुई सेंसकेप है इस उग्र और दूसरों से, आप लोग आज भी ये मसला पुट अप कर सकते हैं कि ये जो लॉज आपने बनाए हैं, ये लॉ फोर्सलेस जो है, इसको डिमोलिश किया जाए और आइन के मुताबिक जो है वो आप यहाँ पे वापस टैक्सी जो ह्यूमन नेवन है उसको लेके आए, ताकि यहाँ पे जो आने वाला जो फ्यूचर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो आबेसलूस होंगे, जो आजकल टैक्सी चला रहे हैं और ये जो एनसेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो क्राइम चल रहा है, ये इसको रोकने के लिए आज अगर आप इकट्ठे ना हुए तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ऊबर भी अनसेट करेगी, बोल्ट भी अनसेट करेगी और ये जो ऑलरेडी है या कोई एक और कंपनी आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 करोड़ का टूर कोपेनहेगन उर्बन गॉन या कहीं से भी 200 का टूर जो है म्यूनिख चीज के अंदर आप लेके लुफ्थावन जाएंगे और ड्राइवर बेचारे का क्या असर हो रहा है। तो ये चीजें जो है, एक ड्राइवर जो है वो 30,000 में से टैक्स दे के हर एक चीज दे के, तो वो 20-22,000 या 20,000 करोड़ में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, उसने फैमिली लेके चलना है। तो इसके ऊपर ये बेहतर है कि आप लोग स्ट्राइक तो नहीं कर सकते, नए कानून के मुताबिक आप लोग जो है वो बाहर निकल के किसी किस्म की हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इकट्ठे होके कहीं समलिंग करके कहीं आप इकट्ठे हो जाए, वहां पे आप जो है एक सिग्नेचर्स लेके आप फलके थिंग के जो उम्बसमैन है उनको और फलके थिंग की जो उल्वेल है आप उनको लिख सकते हैं कि ये जो कानून है जो हम एक्टिव टैक्सी शोफेर है या वोनमैन है, हमें क्या तकलीफ आता है और इसमें टैक्स पेयर के जो साथ ज्यादा हो रही है डेनमार्क में उसकी वजूहत क्या है। तो
1: इंशाल्लाह
2: अगर वो सही तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करे तो यहाँ पे पेंशन वाला जो है वो 3-4 हजार करोड़ जो उसकी फ्रॉड है उसके ऊपर वो खर्चा कर सकता है, रह सकता है। मैं खुद रह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं मियाँ साहब या कहीं मेरे भाइयों के पास मैं बैठता हूँ तो इनको पता है कि शाह साहब की जेब में इतने पैसे नहीं है, ये पेंशनर है, ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं चोरी चुकारी करना शुरू कर दूं और इससे असरात जो है वो दूसरे मेरे भाइयों पर बच्चों पर पड़ेंगे जो यहाँ डेनमार्क के अंदर रह रहे हैं, तो लिहाजा बजाय आप बुरा काम करें आप अच्छाई से रहे और सच बोलें तो इस सच बोलने से आपको ज्यादा फायदा है।
1: ऐसा प्रोग्राम यहाँ साहब खत्म करने से पहले आखिरी जवाब शायद भी दें और आप भी दें, तो चूंकि एक आखिरी सवाल भी कर लें। एक तो मैंगो फेस्टिवल बड़े धूमधाम से जो है वो मार्केट में मौजूद हैं, आ रहे हैं, एक आजकल में काफी प्रोग्राम होंगे, उसके बाद 14 अगस्त
2: भी आ रहे
1: हैं, इस पर भी बात करेंगे, नए जनरल्स बने, 4-स्टार बने, कुछ सुपर सीट, इस पर भी बात करेंगे, कश्मीर पर भी बात करेंगे, आप थोड़ी सी सियासत भी जो है वो जमहूरियत की तरफ भी, दूसरी जमहूरियत की तरफ बढ़ेंगे। जी मियां साहब,
5: मैं असल में जो सच्ची बात है, मैं फजर पढ़ के लेटा था तो मैंने ना अभी उठा, आपका मैसेज आया।
1: तो मियां साहब आप क्यों परेशानी में लेटे हैं, अब आप काम सदर नहीं रहे इसलिए?
5: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने ना 2 बजे ईसा मस्जिद में हमारी मीटिंग है तो जोर के फौरन बाद, तो मैंने वहां पहुंचना है, अभी कोई तैयारी नहीं, अभी तो मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी नाश्ता टेबल पर आया तो मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मैसेज किया, फिर शाह साहब और शाहिद की बातें सुनकर दिल खुश हुआ। मैं बड़ा शॉर्ट सा, मैं माजरत के साथ, उसके बाद बात हो सकती है, लेकिन ये जो शाह साहब ने अभी, शाहिद ने भी काफी बात कर दी, मैंने भी कर दी, ये सिलसिला इस तरह चलना। वो शाहिद की एक बात जो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि ये ह्यूमंस न्यून का जो कंट्रोल था, जरूरत के मुताबिक जो टैक्सी सिस्टम था और सर्विस देने का जो उनका एक पैमाना उन्होंने रखा था ड्राइवर को चेक कर करने का, बैलेंस रखने का, वो अब टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है, अब 2 नंबरी हो रही है, वायलेशन हो रही है, तरह तरह का तरीकाकार अपना लिया गया, जबान आती नहीं है, आगे पीछे से लोग इम्पोर्ट हो गए हैं और मार्केट जो है वो ओवर उसमें यानी के तादाद से टैक्सीज आ गई हैं। ये है शॉर्ट इसका जवाब। बाकी आपने मैंगो फेस्टिवल की कही, मैं 2-3 में मैं गया हूँ और 6 जो अब तक हो चुके हैं और 2-3 अभी और होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन मैंगो की तादाद बढ़ाता जाए और होम पाकिस्तान में यानी के बहुत बड़ी, ये मेरे तो इलाका जो है सर्दन पंजाब से मेरा तलक है, वहाँ के मैंगो जो है सारी दुनिया में मशहूर है, तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोग जो है हर मैंगो फेस्टिवल में आते हैं, जिधर भी हुआ, ब्रॉन्बी हो या बसनुंड हो, बेलरोप हो, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। मैं भी उन लोगों में हूँ कि इंटरटेनमेंट हो, सोशल गैदरिंग हो, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से मिला जाए, एक्सचेंज की जाए अपनी अपनी क्या कहते हैं मसरूफियात, हालात, बात हो, तो ये एक अच्छा साइन है। तो बाकी इंशाल्लाह कश्मीर की जो बात आपने की है, देखें कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उस सिलसिला में जो है अपनी अपनी जगह
1: हुकूमत बनाने जा रही है।
5: देखिए वो मैं अब इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ जो सफर कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है पिछले 77 साल से, और जो सफर कर रहे हैं हर जगह, जो मुश्किल में है, मैं तो उनकी आवाज उठाता आया हूँ पिछले 40-45 साल से, वो ही उठाता रहूंगा। अब 5 अगस्त आ रही है, आपको भी पता, आप इन्वाइट भी होंगे, वो इंशाल्लाह हम तरीके कश्मीर जो है वो दिन मनाने जा रहे हैं। ये आपको पता कि इस दिन स्टेटस जो है हिंदुस्तान ने 370 जो है वो चेंज कर दिया, तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह कल फाइनल होगा कि किस जगह वो मेरी वर्कशॉप में होगा या कहीं किसी और जगह जो है वो इंशाल्लाह एक हम अपने अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जगेती और हिंदुस्तान की जो करतूतें हरकतें जो दुनिया के सामने आ चुकी हैं उन पर बात करने के लिए और अपना मैसेज देने के लिए इंशाल्लाह एक गैदरिंग होगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, बाकी चीजें अगर इजाजत है तो मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त इंशाल्लाह यौम आजादी का दिन है, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं, बैसी में प्रोग्राम होगा मुझे पता है, और उसके बाद इवनिंग में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान सोसाइटी कर रही है, स्कॉलोन जो मीटअप हूं है 9 से 13 जो जगह है उसे, वहां हम बहुत बड़ी गैदरिंग जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान से मेहमान आ रहे हैं, जिसमें इंटरटेनमेंट भी होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप सब होंगे, तो हम मिलकर अपने प्यारे वतन का जो जश्न आजादी का दिन है वो इंशाल्लाह हम मनाएंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ने आपको पता हमेशा अपना मरकजी किरदार अदा किया है, तो तैयारी उसकी सारी हो चुकी है, मेहमान जो है वो पाकिस्तान में वो भी तैयारी में है, और यहाँ हम आपकी दुआओं से आपके
1: सवाल में मनाएंगे या खुली जगह?
5: नहीं जी, हमने इस वक्त जो है यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि वेदर और सारी चीजें जो है वो, और उस वहाँ कुछ कंडीशंस भी है, हम हॉल में मनाने जा रहे हैं। वो हॉल जो है वो तकरीबन 1000-1200 बंदे का हॉल है, और वो हमने भी बुक करवाया हुआ था, तो अब हमने हमारी मीटिंग थी, हमारे सदर साहब पाकिस्तान से तशरीफ ले आए हफ्ता पहले, कल हमारी फाइनल मीटिंग थी, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कॉटलैंड में जो हॉल है उसमें करेंगे, और आप लोगों के तावन और अपने अपने प्यारे वतन के जज्बात में, प्यार मोहब्बत में, मिलीनत में, अल्लाह ताला का नाम, पाकिस्तान से मेहमान, ताजा तरीन सारी जो सूरत हाल है, और एक बेहतरीन किस्म का वहाँ डिनर भी होगा, और उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान से कुछ सिंगर जो है अच्छे वो आ रहे हैं, क्वाली का प्रोग्राम भी होगा, ये हमारा।
2: मियां साहब ये भी क्लियर कर देना कि ये फैमिली प्रोग्राम होगा।
5: हाँ शाह साहब देखा ना, फिर आप बुजुर्ग है ना, ये फैमिली प्रोग्राम है, यहाँ फैमिलीज के साथ भी आप आए। मैं आपको पाकिस्तान सोसाइटी की तरफ से पर जोर दावत देता हूँ, हमारी बहनों बेटियों के लिए खास इंतजाम होगा, और जिस तरह भी अगर कोई फैमिली फैमिली के साथ बैठना चाहे तो उसके लिए हम उस तरह का भी यानी कि एक टेबल की शक्ल में अगर आप बैठना चाहते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि जगह काफी है, तो इंशाल्लाह शाह साहब ये
1: आप स्टॉल भी लगाएंगे?
5: नहीं जी, स्टॉल जो है वो हम नहीं लगाने जा रहे, क्योंकि स्टालों का जो स्टाइल है वो और है, वो 6-7 पहले हो चुके हैं, 2-3 और होंगे, अभी मुझे पता है कि अलबसनून में ये हमारे चौधरी लियाकत साहब और इनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा 8 अगस्त को, तो ये सारे प्रोग्राम तो हमारे हैं ना अपने, ये एक और तरह के हैं। पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो मैं क्या कहता हूँ, मैं वो नहीं कहूंगा शाह साहब ने कल सुना था इस तरह, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इस मुआशरे में जिसके अंदर रहते हैं, यहाँ की सूरत हाल से
1: देख साहब, मेहमान खसूसी जो डिसाइड हुए या नहीं?
5: जी बिल्कुल हो गया, मेहमान खसूसी डिसाइड है, आपको पता चल जाएगा अभी, हम सोशल मीडिया पर तो वो तो शाह साहब ने कह दिया, आपने हमेशा तावन किया, आपने मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया, मेरे अपने जहन में नहीं था अभी, तो अभी टाइम तो बहुत है, हम सारी डिटेल जो है सोशल मीडिया पर भी
1: सब, आपको तो मौका मिलता है, आप हमारे नौजवान सियासतदान हैं
5: जी, आपने हमेशा मौका दिया और हम इसका भरपूर शुक्रिया भी अदा करते हैं, अपना हक भी समझते हैं, और आप हम सब मिलकर एक दूसरे का हिस्सा है, और इसी तरह पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, डेनमार्क हो, यहाँ का मुआशरा हो, अभी हमने टैक्सी पर आप इतना टाइम दिया है,
1: मतलब सब आपने एक बात की है यौम यकजहती कश्मीर की, तो वो आपके दफ्तर में होगा या किसी बार पब्लिक प्लेस पे या एम्बेसी के सामने?
5: देखें 5 तारीख को शाम को 5 बजे प्रोग्राम होगा, अब मैं क्योंकि हम तरीके हमारे सदर साहब जो है अदील आसी साहब वो ठीक नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं, अभी आपको पता हाल लेने गर्मियों की छुट्टियां थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा, और ये भी
1: चले मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आप इसमें क्या इजाफा करेंगे?
5: मैं इजाजत चाहता हूँ अब, सॉरी मैं सुनूंगा आपको लेकिन मैं बात नहीं करूंगा।
1: चलें चलें ठीक है मियां साहब, आपका मौकफ आ गया मियां साहब,
5: थैंक यू सर, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाहिद साहब और आपको इसको बहुत
1: शायद आखिरी बात करें फिर शाह साहब आप शुक्रिया अदा करें, प्रोग्राम क्लोज करें।
0: जी अपना राजा साहब, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कोई?
1: जी
0: जी क्या सवाल था आपका, मेरे जहन से निकल गया।
1: इसका मतलब आप थक गए हैं।
0: नहीं, मैं थका नहीं, मैं मियाँ साहब की बातें सुन के मजबूज हो रहा था, तो सारी बात बड़े हैं मेरे से, तो फिर उनकी जब बातों में मैं मजबूज हो गया, इतना ज्यादा मैं अंदर चले गया। फिर आप सवाल करें मुझसे।
1: आखिर में आप क्या कहेंगे, जो कुछ ये कुछ बातें हुई हमने सब चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसको किस तरह देखते हैं?
0: हाँ, मैं आखिर में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि उधर से शुरू करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी। जो हमारा मेन जो पर्पस था आज का, वो ये था चाक्सा वॉनमैन और नई जो है दुल्हन जो आके बैठ गई है।
1: हाँ, बस मार्केट तो की।
0: हाँ, मार्केट की दुल्हन जो है वो सजा से जो कि उन्होंने बैठा दी है, और उसके लिए वो दूल्हे ढूंढ रहे हैं। तो वो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि इसमें फिर यही कहूंगा कि हमारा अपना कसूर है एज ए कहते हैं फॉरनर्स का, कि हम इसके ऊपर बकायदा होमवर्क नहीं कर सके, जबकि मार्केट में के अंदर हमारा होल्ड था एज ए वोनमैन। फिर उसके बाद ड्राइवर आ जाते हैं, सबसे ज्यादा फॉरनर थे।
1: शायद दूल्हे ढूंढे नहीं, दूल्हों के दूल्हा बनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं।
0: ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, और ये बिल्कुल मैंने इसको खुद देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद देख के आया हूँ। जो लोग इस चीज के खिलाफ थे, बार बातें कर रहे थे, वो उधर पहले पहुंचे हुए थे, और उन्होंने लाइनों में लग के कहा ठीक है, ये उनका अपना अपना अपनी सोच है, या किसी को आप बात तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अब शाह साहब ने भी कहा कि आपकी टैक्सी ब्रांच इसलिए खराब हुई है कि हम कहीं के भी नहीं है, यानी कि हर तरफ हम भागते हैं, हम किसी के नहीं है सके। तो आपने अपनी ही छाक्षा ने उनको तबाह किया, खुद ही अपने पैरों से कलड़ा मारकर वोन मनी के चक्रों में। और वोन मनी जो अभिशास आपने बताया कि डेनिश लोग उन्होंने इसको बनाया हुआ था कानून बहुत पुराना, 60 साल पहले, कि दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। जब फॉरनर आने शुरू हो गए तो उसमें आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो बड़े जो वॉनमैन थे, जो वाई से लेके नैरो पोर्ट तक, उस से लेके वेस्टर पोर्ट तक, ये सारे, और यहाँ उधर क्या कहते हैं पोवा के से लेके, ये सब याद है, ये सब पता है शाह साहब को, और ये सारे वॉनमैन डैनिश थे, जिनकी 40-40 गाड़ियां, 30-30 गाड़ियां, और टैक्सो मोटर होती थी उसके अंदर भी, अलेवन मुझे नाम बोल गया इस वॉनमैन का, डैनिश का, उसकी भी 60-65 गाड़ियां होती थी, और उस जमाने में। तो ये फिर उसके बाद हमें चांस मिला, हमने, मैं यही बताऊंगा, मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, हमने कोई स्टैक, यानी कि जो ताकतवर, हमने कोई ऐसी फाइनिंग नहीं बनाई जिसमें हम ये आगे जाके, जिसमें वकील होता है आपका, जिसमें आपका आपने बेचारे पैसे देते हैं, और वो जो काम जब आप करें तो फिर वो यहाँ पर आपने काम कानून के साथ करना होता है, और ये लोग भी कानून के साथ करते हैं, इनको पता है हर चीज, ये कानून के अंदर ही, जो इनके ये लॉज है ना, लॉज उनके अंदर ही, जैसे कहते हैं स्कैट होल, उनके अंदर ही क्या कहते हैं होल है, उनके अंदर से आप ढूंढते हैं चीजें ऐसी जो आपको फिर आपको मिल जाती है, और वो वकील ढूंढता है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई 70-90% इसमें फॉरनर वॉनमैन मिल के नहीं कोई बनाई हमने, इसमें हम दूर दूर रही हैं। तो ये फिर इसको आपको हमें आज भुगतना पड़ा है। और आप देखें, आपने खुद ही बताया कि दूल्हे भाग रहे हैं उधर जाने के लिए, कोई ऊबर चला रहा है, ऊबर में भी राम नहीं है, ऊबर चलाते हुए उधर भाग रहे हैं कि यहाँ पर हम आ जाए। ये अपने मैं फॉरनर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें सारे अपने मारे भी आ जाते हैं, पक्ष नहीं दूसरे भी आ जाते हैं। तो बाकी रह गई कश्मीर की बात आपने की, कश्मीर से पहले कश्मीर तो है, आप देखें पाकिस्तान के हालात, मुआशी देख लें पूरे पाकिस्तान के, किधर हैं, किधर चले गए हैं इस 4 सालों में या 78 सालों में, कहीं नहीं बढ़े, हम पूरी दुनिया से उधार मांग रहे हैं। ये तो बात टकी छुपी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके सामने है, आपने खुद ही देखा है मीडिया पर, तो मीडिया में ये बातें चल रही हैं, आपको भी पता है, आप भी कहते हैं मीडिया के अंदर है, तो उधार के साथ आप कितनी देर तक चलेंगे, या किसी के आगे हाथ जोड़ के कितनी देर तक चलेंगे? 28 करोड़ की वाम है, एक गयूर वाम है, आपके सूबे हैं, आपकी 7-8 लाख की फौज है, तो हमें किस काम में लगा दिया है, हमारे इदारों को किस काम में लगा दिया इन सियासतदानों ने, जिसकी वजह से उनको वायलेशन करनी पड़ी है इन इन क्या कहते हैं बदबख्तों की वजह से। अब अभी आपने एक सवाल किया, मैं इसका सवाल का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि कश्मीर के अंदर नवाज शरीफ को वोट मिलेगा या वो, यार भाई एक बंदा 45 साल से लगा हुआ है करने, अभी तक यार 80 साल का हो गया, तो उसको तो भाई छोड़ देना चाहिए शर्म के मारे कि भाई मेरे से नहीं हो सकता, मैंने 45 साल से। अब वो यही कहे आके बार बार के मुझे एक मौका और दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा हर 4-5 साल बाद। अभी भाई साहब

0: पर कैसे गुजारा कर रहे हैं ये तो कोई जानता है। आपकी क्या कहते हैं मार्केट जो है हर किस्म की स्टॉक है, आपकी क्या कहते हैं ये मकान बिजनेस जो जिसके कहते हैं ये कारोबारी जो जिसमें ये दुकानें बेचने वाले, मकान बेचने वाले, कोठियां बेचने वाले, ये स्टॉक है बिल्कुल, हर चीज वहां पर स्टॉक हो गई हुई है। हाँ ये है कि सर नीचे करके अगर कोई कौम बेशर्मों की तरह चल रही है वो फिर उनका लिया फर्ज है, वो सर नीचे नीचे करके झुका के तो कह रहे हैं जी ऐसी एनर्जी खुश है, फिर उस कौम का जो है ना अल्लाह अल्लाह
1: चले,
0: ही
1: आपका
0: वारिस।
1: मौक़ा आ गया शाह साहब। शायद ने कह दिया कि जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है, अब जो है यूरोप भी तारीफ़ करता है, रशिया भी तारीफ़ करता है, अमेरिका भी तारीफ़ करता है, ईरान भी तारीफ़ करता है, तो दुनिया में नाम तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कजी खामियां तो रहती रहती हैं, आते रहते हैं, हालात तब्दील होते रहते हैं, लेकिन हर बहुत जो बात जो है वो गौर तलब है। शाह साहब आखिर में अपना कमेंट्स भी दें और प्रोग्राम को क्लोज़ भी करें।
2: जी बिल्कुल, दुनिया सब जानती है कि जो करप्शन पाकिस्तान में है उसके वारिस हम यूरोप में भी बन गए हैं, दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहां पे हम ये काम दिखाते हैं। मैं अपने अल्फाज में ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो है दुनिया के चंद चंद उन ममालिक में शामिल है जो कि एशिया में तो सेकंड नंबर पे रिचेस्ट कंट्री है। अगर कोई मेरी बात से मुतफिक नहीं तो ये उसका अपना जहन है। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक बंदे ने मकान खरीदा है 4.25 करोड़ का, और उसने वो मोहल्ले के अंदर मकान जो खरीदा है वो 4.25 करोड़ उसने कैश पैसे दिए हैं। क्या डेनमार्क के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं क्या हमारे कोई ये साबित कर दे, कोई साबित कर दे कि उसने जिस वक्त का वो डेनमार्क आया अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किससे पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किससे पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8-9% लोग ऐसे होंगे जिन जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके, यहाँ तो जो मिलियार्ड अगर 10-10, 12-12, 20-20, 40-40 मिलियन करोड़ के जो मकान लेते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है क्योंकि बीबीए भी सुनती है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात 20-20 घंटे 22-22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नालायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डेनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का है, ये फलाना गुजरात का है, ये फलाना पिंडी का है, इसकी मदद नहीं, ये करनी है वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस से लेते थे तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे बाय बाय, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है ये हमने यहाँ हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते

0: कि अवेयरनेस दें। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूं कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाएं और ये सिग्नेचर कर दें, तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी। क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा है, मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊबर को बैन किया, तो फिर किस तरीके से सांसदान सुप्रीम कोर्ट को के लॉ को वायलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए। जब तक आपके पास भविष्य नहीं, आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आईन है और ये लॉ फौसले है, और ये फौसले है आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे नहीं खड़े हो सकते, तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा कि मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000-32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, आपको एक चीज जेनशीन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के, उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते, आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फलके थिंक के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आईन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आईन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी, अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या होगा, जब ये 600 नई टैक्सी सड़क पे आ जाएगी, हशर क्या होगा कि वोन मैन अपना 30,000-35,000-40,000 का खर्चा जो है गाड़ी का वो नहीं दे सकेंगे, और वो कहाँ से कवर करेंगे, बैंक उनको लोन नहीं देगा, दूसरी चीजों पर उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेंगे, वो तो बैंकक्रप्ट होंगे। मैंने खुद कहा अगले दिन कि मैंने 1,00,000 करोड़ फियर गन सियोटी को दे के, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो मैंने अपनी सेल्स कैप को, मेरे वकील ने कहा था बैंकक्रप्ट हो जाओ 5 साल तक कोई, मैंने कहा मैं नहीं होना चाहता बैंकक्रप्ट, मैं आज तक नहीं बैंकक्रप्ट हुआ, मैं अब क्यों। तो मैंने 1,00,000 उनको कैश दे के बैंक के थ्रू से, तो मैंने अपने आप को फ्री किया। 62,000 मुझे गाड़ी का घाटा नुकसान हुआ, मैंने वो भी पे किया। बात असल में ये है कि जब लोगों को गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी लोगों की, लोग कहाँ से इनकम लाएंगे, इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि आज आप 5-5-6 लाख की 1-1 मिलियन की इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आप भाग रहे हैं, खुदा ना हादसा कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती
1: है। आपकी बात में माजत के साथ बोल रहा हूँ शाह साहब, कभी खिलाड़ी भी फेल हुआ, खिलाड़ी कभी एक क्लब में बिक जाता है, कभी दूसरी क्लब में बिक जाता है, खेलने वाला खिलाड़ी कभी नुकसान में नहीं जाता।
0: जी वो आपकी बात सही है, पर ये खिलाड़ी नहीं है, हम लोग जो टैक्सी वॉनमैन है या टैक्सी ड्राइवर है, हम नॉलेज की बेस पर काम करते हैं कि हमें टूर मिले, हम काम करें, हमें ज्यादा से पैसा मिले, हमने पाकिस्तान का भी कल्चर रखना है, हमने यहाँ का भी कल्चर रखना है, हमने बच्चों की शादियां करानी है, उनको इतने इतने लाखों के जहेज देने हैं, तो ये सारा नॉलेज जो हमारे अंदर भरा है इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से जो है जो कमाई है उसका अजाब हमारे पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। जिन्होंने वेले लिए हुए हैं, रायका हाउस लिए हुए हैं, सब कुछ देखे, कितने लोग, ये शायद तुम्हें पता है कितने लोग मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, कितने लोग चले गए हैं जर्मनी के अंदर, मैं क्यों अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊ, मुझे नहीं रोका इन्होंने, क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ, मैं कानून के लॉज होल्स को जानता हूँ। ये चीजें जो है जब हम इनको कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, ये कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, ओ जी मेरे बच्चे भी पीएचडी कर गए, मेरे बच्चे बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब मैं उनसे कोई मदद मांगता हूँ तो वो कहते हैं फा लवे हमें दे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो हमें क्या बताएंगे जब उनको खुद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कानून एक अलहदा चीज है और आइन एक अलहदा चीज है। यहाँ का रिटर्न आइन है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शायद को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मियां मनीर साहब को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ के किंग को भी उतनी प्रोटेक्शन है, कोई फोर्स केस पेंडिंग नहीं, लेकिन जो आइन है जो लॉ है जो इन्होंने कानून बनाए हैं उसमें फोर्स केस पेंडिंग है, ये कैसा आइन रखा हुआ इन्होंने, या ये आइन को खत्म कर दे और सारे लॉ फोर्स रहे इंग्लैंड की तरह ले आए कि जो पार्लियामेंट विल चेक करती है हम उसको मानेंगे, तो फिर आयन रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करना है कि क्या आप अपने आयन के को मुकदस समझते हैं या आप जो लॉ फोर्स बना रहे हैं इसको मुकदस समझते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब
2: शाह साहब मैं एक बात ऐड कर दूं अगर इजाजत हो आपकी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल
2: शाह साहब आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में ये हमारे सियालकोट के कि जी असि भी भोले बादशाह हां। शाह साहब ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफ्ज, मैं हालांकि
0: मैं साजिश ही मैं
2: साजिश ही कहना चाहता था लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है आप लोगों को, हमें वोन मनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से, बिल्कुल ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है, अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सब कुछ समझ आ गई है, हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है, इनको हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश जो एक थे डैनिश उनको करते हैं, हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते हैं।
1: शायद अपने खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
2: आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, खाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबार है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं।
0: और शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके तो कांग्रेस वाय के जो बीच में चौक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहता मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्ती वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा हेरोइन नेमन के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिपे बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम करे, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे, तो वहां पे तो चार आदमियों ने,
1: अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं,
0: बिल्कुल प्रूफ है, मैंने आपके सामने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने हेरोइन नेमन में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी उस वक्त, चार आदमी थे, तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है, वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और मैं कभी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है। और ये चीजें जो जो हुई और इसके इसकी वजूहात जो थी वो सबके सामने आ रही हैं।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سامعین، موسم کے لحاظ سے دیکھیں تو ادھر بارش لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے۔ دو دن موسم گرم رہا، کل سارا دن تقریباً دھوپ ہی رہی، بادل کم رہے، لیکن آج دھوپ بھی نکلی ہے اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اور ڈنمارک میں مختلف جگہوں پر مختلف موسم ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آن دا ہول ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اور سیاسی موسم اس لیے نہیں چل رہا کہ سیاسی موسم چھٹیوں پہ آ رہا ہے، کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 12 مہینے ایکٹیو رہتے ہیں، ان میں تجزیہ نگار انالسٹ عدنان علی امین بھی ہیں۔ عدنان، آپ کو ایک بار کی بات پر دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟
1: اللہ کا شکر ہے۔ عدنان، موسم پھر بارش شروع ہو گیا اور ساتھ ہی دھوپ نکل آئی ہے۔
2: ہاں، دھوپ نکل آئی ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا اور کافی چیزیں کہتے ہیں، موسم تو ڈنمارک کیسے رہتا ہے، جیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں ویسے موسم چینج ہوتے ہیں۔
1: عدنان، سیاست میں تو بالکل خاموشی ہے، لیکن وہ سینہ گزر سے باتیں چلتی رہتی ہیں، لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں یا دوسرے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے تو کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی خبریں سینہ گزر چلتی رہتی ہیں۔
2: دیکھیے رضا صاحب، ابھی تو سمر ویکیشن چل رہے ہیں نا، سمر ویکیشن میں تو پھر کہتے ہیں نا خاموشی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ خاموشی ختم تو ہوگی،
1: لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے غیر ملکی بیک گراؤنڈ کے ہمارے سٹی کاؤنسلر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین تو بہت کم ہیں، تو یہ اپنے کام میں ایکٹیو ہیں یا یہ بھی چھٹیوں پہ ہیں؟
2: اپنی ویکیشن تو کر رہے ہوں گے، اور آگے جب یہ واپس آئیں گے اپنی ویکیشن سے، تو پھر تو ان کو کافی کام ان کے ہاتھ ہوں گے، کیونکہ جب یہ واپس آئیں گے تو 98 کمیونوں کے بجٹ بن رہے ہیں، 4 ریجن کے بجٹ بن رہے ہیں، تو دیور وغیرہ بہت سے کہتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی مصروفیت کافی ہوگی اور پریپریشن بھی ہوگی، اور ہر پارٹی نے اپنی ڈیلیگیشن تو بنا لی ہوگی، جن میں کیا کہتے ہیں ڈیل کرنی ہے یہ اکنامی کی اور بجٹ کی، تو پھر ان کی مصروفیت تو کافی ہو جائے گی جب
1: واپس آئیں گے۔ عدنان، لوگ تو مینگو فیسٹیول پر ہمارے لوگ ایکٹیو ہیں، ہو رہے ہیں، باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، چھٹیاں تو ساری اسی طرح گزر رہی ہیں، سیاست تو کم ہو رہی ہے، لیکن ذرا شادی بیاہ پر سیاست تو ہوتی رہتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟
2: سب دیکھیں، سیاست تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور کہاں پہ ہے جہاں پہ سیاست نہیں، میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اب دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے۔ جب سے یہ ڈنمارک کا الیکشن ہوئے دونوں، تو آپ ایک ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا جا رہا ہے اور کافی سختی آ رہی ہے، تو اب اس بات کو نظر انداز کر کے تو نہیں کر سکتے بندہ، تو اب اس بات پہ غور کرنا پڑے گا سب کو۔ کم
1: عدنان، ایک بات بڑی عجیب ہے، ہمیشہ سے ہم سنتے جا رہے ہیں کہ سیاستدان مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ مسلمانوں کو تو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اگر بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔
2: دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مطلب بات کریں تو انسان جب بات کرتا ہے نا تو کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے اور کچھ وقت بات بھی ہوتی ہے، جیسے ایک اسلام کے بارے میں بڑا پھیلا ہوا ہے، اور اس کا یہ بھی تو اس کا پہلے ایک غلط ہونے لگ پڑا ہے نا، جو ٹیٹ پال کا پتی اٹھانے لگ پڑے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ سموس ہیں اس بات کا، مگر میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے وہ ان کا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہوگا وہ
1: ڈینش سیاسی پارٹی ہے، ڈینش سیاسی وہ جماعت ہے، ڈینش پیپلز پارٹی ہے، سیاستدان بیان دیتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا جواب دینا چاہیے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
2: नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर राजा साहब उनके जो फैक्ट होते हैं ना वो बहुत गलत होते हैं। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने एक फेसबुक पर लिख दिया हुआ था कि अब हमें हलाल खाना पड़ता है, ये किसी ने आपको मजबूर तो नहीं ना किया, जो पढ़ेगा वो यही समझेगा कि उनको जबरदस्ती हम हलाल करा रहे हैं। तो
1: ये
2: बंदे
1: तो लोग
2: को
1: अदनान खुद समझ जाएंगे कि यहाँ किसको कह सकते हैं तुम हलाल खाना, और वो भी डेनिश पीपल्स पार्टी कह रही है जबरदस्ती मुझे हलाल खाना पड़ता है, कैसा मजाक है ये।
2: वो वही बंदा कहता है ना कि फिर बंदा उस चीज को उठाता है, बंदा उस चीज को बहस करता है, उनको समझाता है, और फिर ही उनको समझ आती है कि बंदा बात सही कर रहे थे गलत बात कर रहे थे, और इससे ही पता चलता है। मैं लोगों को यही कह रहा हूँ कि ये 5 सितंबर 2026 को ये जो 1200-1300 बंदे हैं मेंबर हैं बस अभी तक, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन लेके आ रहे हैं इसको बस बंदा नाकाम कर दे, तो फिर बंदी के लिए क्या कहते हैं एक पिक्चर है कि हम उस लेवल पे भी नहीं
1: तो
2: पहुंचे।
1: जब डेनिश खुद इस प्याज की जो है वो अगर कानूनी इजाजत है वो तो देंगे, लेकिन अगर कानूनी मुखालफत करते हैं तो वो भी डेनिश करेंगे। तो हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब ने, शाह साहब को आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा कपूर साहब आपको, आपकी टीम को, अदनान साहब को, और आपके लिस्टनर नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राजा साहब,
1: शाह साहब बात चल रही थी कि आगे आगे अदनान ने बात की है कि डेनिश पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें भी हलाल खाना पड़ता है, तो शाह साहब अगर कोई बंदा कहता है तो उनका राइट है, सियासी राइट है, वो कह सकते हैं।
3: जी अदनान ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है कि चंद एक आदमी जो है ये सारी फेसबुक पे सारे सोशल मीडिया पे घूम फिर कर, जैसे हम घूम फिर के इनकी खबरों को देखते हैं, ये सारे वही लोग हैं। देखिए इस वक्त डेनिश फलके पार्टी जो है वो उसके लोग जो है, मैंने अगले दिन भी आपको भी भेजा था, अदनान को भी भेजा था कि एक आर्टिकल आया हुआ था फेसबुक पे, उसके अंदर मैंने लिखा था कि डेनिश जो है वो रेसिस्ट नहीं है, और ये जो चंद एक रेसिस्ट है ये मुख्तलिफ पार्टियों में चले गए हुए हैं, और इनको डेनिश जो आइन है वो भी नहीं आता, और ये मुख्तलिफ पार्टियों में देखेंगे। सोशल डेमोक्रेट की जो टॉप पार्टी है इसके अंदर जो बैठे हुए बंदे वो यंग आदमी है, और उनको बिल्कुल अगर जाके आप मेरे फेडरेशन को पकड़ ले और उसको कहे कि आपने वो जो तुम्हारे वो किए हुए हैं जो तुम्हारे मशीर हैं उनके बगैर खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि फलानी फलानी आइन के अंदर कौन सी लॉ है इसके बारे में, और ये लॉ फोर्स है जो है पल के दिन में इसके बारे में तुम्हें बताओ, तो वो नहीं बता सकेगी। क्यों? कि ये अपने आईपैड कंप्यूटर और इन चीजों पे मुनसर करते हैं और अपने मशीरों के सर पे ये सियासत करते हैं, इनको आयन का जरती भर फर्क नहीं पता। अगर डेनिश आयन के मुताबिक यहाँ पे हलाल फूड जो थी उसकी सबसे पहले इजाजत ये होती, और ये जो जो अब ये देखें मैं आपसे बात कर रहा था तो बीच में वो फेक नंबर जो है जिनके अभी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, जिनको आज भी 3 आदमियों को उन्होंने पकड़ा है डेनमार्क के अंदर, ये बार बार बार बार हर बंदे को, खसूसी तौर पर जो लोग पेंशनर हैं और जो फॉर्चुन पेंशनिस्ट हैं उनको टेलीफोन करते हैं, कभी पुलिस का कहते हैं, कभी गवर्नमेंट के अदारों का नाम लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे मैं वाजह करता जाऊं,
1: इस बात की क्लियर कर लें, अदनान आपने शाह साहब की बात सुनी, शाह साहब कह रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ तो लोग फेक नंबरों से जो है वो फोन करते हैं, उन्होंने जिक्र भी किया, तो क्या इस जैसे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है?
2: सब चेक एंड बैलेंस होता है, मगर ये जो फेक नंबर से फोन कर रहे हैं ना बहुत सारी, ये बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं, और ये स्पेसिफिकली पर ये फोन इसलिए बुजुर्गों को करते हैं कि बुजुर्गों से ये फिर उनकी काउंटी नंबर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं और इनकी बैंक काउंटी खाली कर लेते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। और दूसरा, इन्हें एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है, अफ्रीका से बैठे हुए हैं, वहां से आपको फोन करते हैं और आप 50 करोड़ का बिल डाल देते हैं, और फॉर एग्जाम्पल जिनके पास कहते हैं कार्ड उनके दावा होता है, जिनके पास मेंबरशिप है उनके नहीं पैसे दावा होते, तो इनके पास क्या कहते हैं काफी नए ट्रिक्स ने शुरू किए हुए हैं और काफी लोगों को परेशान किया हुआ है, ऑब्वियसली पुलिस को पता है, पुलिस वॉच आउट करती है, पुलिस का वॉच डॉग होता है, मगर मसला वही होता है कि पुलिस किस किस के पीछे पड़े, वो आगे इतनी मसूफियत है उनके लिए। इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर, रेगिस्तान के अंदर वो स्ट्रीट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस के पास भी तो एक लिमिट रिसोर्स है। इस वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भी समर वेकेशन कर रहे हैं, तो अभी वो उनके उनके उनके अंदर क्या कहते हैं ये मालत है उनको,
1: ऐसा। बदनान ने बात बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन शाह साहब आप देखे ना, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? आप तो निशानदेही करते रहते हैं, अदनान निशानदेही करते रहते हैं। शाह साहब लोग अगर खुद ठीक हो जाए, मिसाल के तौर पर कानून तो कानून नहीं हरकत होना, हम कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाह साहब हमें खुद भी तो ठीक होना चाहिए।
3: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। अदनान क्योंकि यंग आदमी है, इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स के अंदर, इसने खुल के बात नहीं की। आज के अखबारों में और पुलिस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वाजह है कि तीन जो है वो यहाँ के लोकल पकड़े गए हैं, और वो हमारे हम लोगों में से हैं, और उन्होंने फिनलैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरी जगह का भी जिक्र किया, कुछ बदमाश तंजीमों का यहाँ का जिक्र किया उन्होंने। तो ये मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जब तक उनको परमानेंट दातों से सजा नहीं हो जाती, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप पकड़े गए हैं, और जिनके पास से, कोपेनहेगन से, जिनके जिनके घरों में से ये चीजें सब कुछ मिली है। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना घर का बेटा बेटी लंका जाए, ये हम लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करने पे नहीं, और हम कैसे ठीक करें राजा साहब? हमने इस मुल्क को तबाह किया, हमने अपने मुल्क को भी तबाह करने की बुनियाद रखी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मैंने ये जो बात किया मैं इसको 2 मिनट में तफसीलन आपको बता सकता हूँ कि हमने क्यों जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसको भी उसकी भी जड़ें काटी और इस मुल्क भी हम जड़ें काट रहे हैं।
1: शाह साहब आप बताएं, जब आप लोग आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो क्या उसको ये जो कानून कायदे अक्सर जिक्र करते रहते हैं आप, क्या इन लोगों ने खराब किए या हमने खुद खराब किए?
3: जी हमने जब अपने यंगस्टर्स पे हर चीज छोड़ दी, जब हमने कहा जी हमारा बेटा हमसे ज्यादा डैनिश बोलता है, हमसे ज्यादा कानून समझता है, हमसे ज्यादा, हालांकि उसको मैंने जब ये चैलेंज करके कह दिया है कि मेरे फेडरेशन को या जिसको भी आप सामने बैठाएं उसको कहे कि आयन की ये शिके जो है चाणक्य उनसे पूछ ले, वो आपको नहीं बता सकेगी। ये अदनान कितना अरसे से यहाँ पैदा हुआ है, इसको भी सारे आयन का नहीं पता। ये चीजें जो होती हैं वो लोग करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और उनके ऊपर डेली रिसर्च करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ हमारे यंगस्टर्स के ऊपर हमने सबको छोड़, वो छोड़ो जी मेरा बेटा तो भाई वो तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो कोई पार्लियामेंट का जो लॉज है उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो कोई वकील तो नहीं बन रहा, अगर वकील भी बन रहा है तो वो जो सब्जेक्ट उसके है उसको पढ़ रहा है, वो सब कुछ हम लोगों ने जो बुनियाद रखी है ये झूठ पे रखी है। हम लोग यहाँ पे बस शो मारते हैं और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को हम तबाह बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं वहां पे करोड़ों पे यहाँ के लाखों करोड़ को जब चेंज करते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं, वहां हम शो मार के आते हैं तो हमारे खानदान वाले लोगों को कहते हैं देखो फलाने का बेटा इटली गया, फलाने का बेटा डेनमार्क गया, फलाने का लंदन गया, वो कितना कमा के ला रहा है तुम भी जाओ। वो बेचारे डंकी लगाते हैं, अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। ये हमारे लोगों की खामी है। अगर हम वहां पे सच बोले कि हम कितनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे टैक्सियां उठाते हैं, लोगों के सामान उठाते हैं, नशेयों को ड्राइव करते हैं, खाना हमें सही तरीके से नसीब नहीं होता, हर चीज का हम सच बोले तो ये चंद एक पैसे जो हम बैंकों से उधार ले आए या दोस्तों से मांग के ले आए और पूरे खानदान के पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ ले आए हैं, इसको हमारी शो ना समझे, हमारी मजबूरी समझे, तो फिर लोग जो है वहां पे भी वो कहेंगे कि ठीक है भाई बाहर से तो हम अपने मुल्क में सो गए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। जो बच्चा 25-30 लाख रुपया दे के एजेंट को बाहर आने की कोशिश करता है उसकी सेविंग हमसे ज्यादा है तो वो आ रहा है, तो हमारे पास तो इतनी, किसी के पास भी इतनी सेविंग जो है वो कम होती है। تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کم از کم ایسے حالات پیدا کریں کہ جو ہم پہ وہ پانچ نمبر لگ چکی ہے ہم اس کو جو ہے ہٹانے میں یہاں تنظیمات کی مدد کریں, وہ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے.
1: میں یہ بتا دوں کہ بات کرتے ہیں شاہ صاحب تنظیمات کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان خود آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو سیاست کا نہیں پتا, آپ سب سیاستدانوں کو جانتے نہیں ہیں.
3: جی وہ جو سیاستدان آپ بات کر رہے ہیں وہ آج کل سب پاکستان کی سیاست کرتے ہیں. اگر ڈنمارک کی سیاست کی جائے اور ڈنمارک کے اندر ہمیں بتایا جائے, دیکھیں میں خوش ہوں, میں راضی ہوں عدنان پہ کہ اس کی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے دوست احباب ہیں, لیکن یہ بھی جس وقت آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں یہ بھاگ کر آ جاتا ہے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ عوام کے لیے دے رہا ہے. یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے, دوسروں کو بھی چاہیے. کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کئی کونسلرز کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے گھر ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں. اور بھائی ڈنمارک کے اندر جو ہے یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بکار جاتا, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. آپ رہے, آپ اگر قانون کو جانتے ہیں تو قانون کو بتانا آپ کا فرض ہے کیونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں. میں آپ کو یہ پیشگوئی کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے اب بھی سیدھا راستہ نہ اختیار کیا تو نیکسٹ الیکشن میں یہ ڈینٹوں کو ووٹ ڈالیں گے, کیونکہ جب 70s 80s میں ہم لوگ یہاں پہ تھے تو ہم ڈینٹوں کو ووٹ ڈال دیتے. یہی مونس لپٹ آفٹ, یہی سارے جو تھے پرانے پرانے, یہ سارے کے سارے ہماری عزت کرتے تھے. یہ اس وقت جوان تھے اور یہ ہمارے لیے اچھا قانون لے کے آتے تھے.
1: اس وقت یہ اعتبار کرتے تھے نا.
3: جی بالکل, ہم ہمارے پاس اس وقت نہ اتنی بڑی گاڑیاں تھیں, نہ ہمارے پاس شو مارنے کے لیے کوئی چیز تھا, نہ یہاں پہ شادی ہال وغیرہ تھے, نہ کوئی اتنی چیز تھی ہمارے لیے. ہم لوگ سارے آرام سے جاتے تھے, سائیکلوں پہ جاتے تھے, بسوں پہ جاتے تھے, ٹرینوں پہ. ٹرین بعض جگہ ایسا ہے پہلے اور آگے پیچھے ٹرینیں ہی نہیں ہوتی تھی تو بندے پیدل بھی چلے جاتے تھے. تو لوگ کہتے تھے یہ محنت کرنے والی قوم ہے, ڈینش کہتے تھے یہ قوم. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ حلال کا مسئلہ جو دھران بتا رہا تھا, میں اس کو پڑھ رہا تھا ابھی, تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 500-600 لوگوں نے ایک ایک بندے کو جس سے اچھی بات کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ٹرینگ نہیں کر رہا, ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ ہم حلال کھائیں. تو لیکن ایک عورت یہاں تک نکلی ہے, اس نے کہا کہ حلال کھانے میں کیا غلطی کیا, وہ بھی ڈینش ہے. دیکھیں آپ ان کی زبان میں آپ ان کو لکھیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ لکھیں تو یہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. یقین کریں کہ کل میں گلوسٹاپ گیا ہوا تھا تو گلوسٹاپ کے اندر میری آپ سے اس وقت بات ہوئی تھی, آپ ٹریول کر رہے تھے اس وقت میں گلوسٹاپ گیا تو گلوسٹاپ میں میری دو چرچ کی عورتوں سے بات ہوگی اور وہ انہوں نے کہیں وہ جو میں اور آپ لوگ گئے تھے ادھر فرق تھنگ کے اندر ڈبیٹ تھی تو وہاں وہ انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسکول ہم نے تمہیں دیکھا تو میں نے کہا ہاں میں وہاں گیا تھا, ہاں میں وہی تھا. تو وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز مانی کہ آپ مسلمان جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ جیسس کرائسٹ کے نام کو, مریم کے نام کو, حضرت بی بی مریم کے نام کو آپ جلانا پسند کریں گے؟ کہتی ہے نہیں نہیں نہیں نہیں. تو میں نے کہا ان کا نام تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. کہتی ہے ہاں بہت جگہ میں نے خود پڑھا ہے, میں نے بہت سے لینگویج اپنا ریلیجن کورسز کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا پھر تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے قرآن کو بند کیا.
1: تو شاہ صاحب وہ سمجھدار لوگ ہیں, شاہ صاحب وہ باتیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یا دوسرے لوگ جو بولتے ہیں. تو عدنان آپ لوگ سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پیدا ہوئے, ہر چیز کو آپ سمجھتے ہیں. تو آپ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں یہ نوجوان سیاستدانوں کو جو کمیون میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تجربہ ان کے پاس بھی, آپ کہیں سے چھوٹے ہوں گے کہیں سے بڑے ہوں گے, تو جو باتیں ہم آگے پیچھے سینہ گزر چلتی رہتی ہیں, سینہ گزر جو اخبار نکلتا ہے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نوجوانوں سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں, اس کو ہم ہائی لائٹ تو یا نہیں کرنا چاہتے.
2: سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ سیاستدان ہوتے ہیں نا تو آپ کو کوئی غلطی ہو تو آپ کے سینئر ہیں, آپ کو ان کو سیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں.
3: عدنان کی آواز کلیئر نہیں ہے. تو
2: میں نے یہ کہا کہ جو ہم لوگ سیاستدان ہوتے ہیں سینئر, ان کی باتوں کو देखते हैं और उनको गौर करते हैं, और हम गाइडलाइन यही देते हैं कि जो खड़ा होना चाहता है ना उसको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसके अंदर खड़े होने के लिए ना प्रिपरेशन की जरूरत हो। आप जब कोई काम करना चाहते हैं या करने होते हैं तो आपको काफी चीजों को देखना होता है, काफी क्या कहते हैं टाइम देना होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि नेक्स्ट कमिंग स्टेज में जब ये वापस आएंगे वोकेशन के बाद, तो सब जितने सिटी काउंसिलर हैं या जितने डीपीटी काउंसिलर हैं या जितनी पार्टी के बींग होल्डर हैं, उनका सबसे बड़ा काम यही होगा इस वक्त देखना कि बजट कैसे बढ़ता है, और उसके लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये आसान नहीं होता, क्योंकि आपने हर सूबे को देखना होता है कि किस का एरिया है, जिसका स्कूल हो गया, जिसका बिजनेस हो गया, जिस तरह हो गया, हर एरिया को देखना होता है। और इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज स्कूल है, बुजुर्ग हैं, अगर अभी एक और भी तो चैलेंज है ना, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है, जैसे ये क्राइम का बहुत मसला है, इसके अंदर पुलिस को भी रिसोर्स चाहिए, पुलिस ने भी देना है कि किसको प्रायोरिटेट करना है और कैसे इन चीजों को लेके जाना है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसमें जिस में देखें। और तो सबसे बड़ा जरूरी ये भी होता है कि आप जैसे आप किस उजवेल में बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल आप स्कूल उजवेल में बैठे हुए हैं तो आप ये देखें कि स्कूल उजवेल की चीजें कौन सी हैं, स्कूल कैसे चल रहे हैं, स्कूल को किस तरह की जरूरत है, स्कूल के पास पैसे हैं, स्कूलों के पास की चीजें हैं कि नहीं, तो ये सारा क्या कहते हैं देखना होता है। हमें भी लोग बड़ा सवाल करते हैं, हमें भी बड़ा पूछते हैं, तो हम उनको वही जाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, तो गलती हमसे होती है या कोई मिस्टेक होता है हमसे हमें बताएं, फिर हम उसको ठीक कर दें।
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, बात तो सारे करते रहते हैं, मीडिया पे भी चलती है, अखबारात में भी चलती है, तो शाह साहब आपको नहीं पता जो कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता, जो कुछ अब मसाजिद में एक जगह पे हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, तो शाह साहब क्या इसमें डैनिश करते हैं या डैनिश तंजीमें कर रही हैं, गलतियां हम खुद करते हैं तो इसका नुकसान जब काफ़ी देर जाकर होगा पता उस वक्त हमें लगेगा, शाह साहब हम खुद एक दूसरे के नुकसान करते हैं।
3: बिल्कुल जी, बिल्कुल अदनान ने बिल्कुल सही बात की है, मैं इससे अवेयरनेस हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन से लोग क्या क्या कर रहे हैं। मसला यह है कि जब तक
1: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कोई नतन्याहू कर रहा है, ट्रंप कर रहा है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन हमारी मेटे फेडरेशन जो है या हमारे जो मॉडर्न मैसेज में था वो भी आगे नहीं कर रहे हैं, वो हमें डायरेक्ट नहीं कह रहे, जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम अपनी अपनी जात में अपने आप में मगन इस कानून की धजियां उड़ा रहे हैं, हम खुद करते हैं ये, हमें कोई आगे ये नहीं कहता कि तुम ऐसे करो, कोई हमें यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा, हम आराम से रह रहे हैं, बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पे हमें बिल्कुल
1: पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो पाँव तो जख्मी होगा।
3: जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि अभी देखें सबसे बड़ी ये बात होती है कि अवेयरनेस किसने देनी है, अवेयरनेस देनी है सोशल वर्कर ने, अवेयरनेस देनी है जो सियासत से तल्लक रखते हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे जी कि मैंने किताब लिखी, मैं पाकिस्तान चला गया वहां पे मुझे ये मेडल मिले, अब मैं ये कहूँ कि मैं लंदन में चला गया वहां मैंने बड़ी अच्छी सियासी तकरीर की, और मैं जर्मनी में चला गया वहां मैंने जाके इतना, तो ये फलाने फलाने पॉलिटिशियन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आपने इस कौम के अंदर जो देखे, जो हमारे मेरे साथी आए हैं 70s से, उनके लिए सबसे जरूरी ये बात है कि जब वो पेंशन पे जा रहे हुए, हमने 500 दफा उनको ये बात बता दी हुई है कि उनके जो उस वक्त SID के और यूनियन के किसी भी यूनियन के मेंबर थे तो वहां उनकी उल्विका फिक्सिंग और दूसरी फिक्सिंग जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस है उनकी हुई है, और वो जो है वो पेंशन वाले देखते हैं कि भाई ये कितना अच्छा पेंशन के मेंबर रहे हैं। यहाँ पे एक ग्रुप होता है कि जो 40 साल इस मुल्क के अंदर काम करता है, 40 साल काम करता है, उसको ये पूरी पेंशन देते हैं, फल के पेंशन, वो फल के पेंशन होती है तकरीबन 8,000 के करीब, और जो बंदा जो यहाँ पे अपने पूरी फॉर्म को फिलअप नहीं करता उसको ये कम से कम पेंशन ये देते हैं। अब लोगों ने इसका सहारा क्या ढूंढ लिया हुआ है,
1: तो शाह साहब इसके लिए किसने आवाज उठानी है, मीडिया तो आवाज उठाता है, तो क्या कमूनों से आवाज उठ रही है?
3: बिल्कुल नहीं, यही तो बात है, यही तो बात दलान को चाहिए कि क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्कर सोशल वर्कर है, इसको चाहिए कि खुल के ये बात करे। अब हमारे लोगों को ये पता नहीं, हमारे लोग जो हैं वो दानिश के तरीके से तलाक ले लेते हैं, लेकिन इस्लामी तरीके से कहते हैं कि हमारी शादी है, और वो गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे पेपर वो पेपर भरे पड़े हैं कि ये फॉलो जो है ये कर रहे हैं। कल को जब ये बात आती है
1: इसका हाल भी होना चाहिए ना। देखें शाह साहब, अगले इलेक्शन आ जाएंगे, कम्यून के पता ही नहीं चलेगा कि अब तो कहते हैं लोग अभी हुए, इतना अरसा ही नहीं हुआ, तो कम्यून के तो एकदम आ जाएंगे। पार्लियामेंट के भी किसी टाइम हो सकते हैं, कम्यून के तो अपने टाइम पर होंगे। अदनान, मैं आपसे चाहूंगा कि आखिर इसका कोई हाल बताए ना
2: सब। ये देखिए, ये तो इंसान को देखना चाहिए जिस पर ये बात की गई है कि आप यहाँ का सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि आपने जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके लॉ को फॉलो करें। आप इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए ज्यादा मुसीबतें बनेंगी। तो इसका तो यही हाल है कि बंदा जिस मुल्क में रह रहा है उसके लॉ को आप फॉलो करें और उसको देखें और उसको रिस्पेक्ट करें, ये ना करें कि आप लोग उसको ब्लॉक करें। ये जो ये शादियों का मामला है, ये तो काफी अरसे से लोगों को पता है और मुझे अटोटी को भी पता है कि क्या कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्या कहते हैं, हम इस पे देखेंगे भी और इसका कुछ हल निकालना भी पड़ेगा,
1: हल निकालना पड़ेगा। शाह साहब, आखिर में अदनान का शुक्रिया भी अदा करें। शाह साहब, एक बात तय हो चुकी है कि जितने कानून सख्त हुए वो हमारी अपनी वजह से, गैर मुल्कियों की वजह से हुए। कानून पहलों में बहुत ज़्यादा नरमियाँ थी, अब जितनी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं गैर मुल्कियों की, अगर हम एक दूसरे की शिकायत कर कर उनको खुद नुकसान देंगे, तो शाह साहब इसमें आप क्या समझते हैं, ये डैनिशों का कसूर है, डैनिश पीपल्स पार्टी का कसूर है?
3: नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब समर फेरी है, लोग जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, बाज लोग जो हैं वो यूनियन पे हैं, बाज लोग बीमारी के पैसों पे हैं, बाज लोग जो हैं वो फोर्टिस पेंशनिस्ट हैं या पेंशनिस्ट हैं, उनको भी ये चाहिए कि जब वो राइज करते हैं तो वो बकायदा अपने अपने अदारों को जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं वो बता कर जाए, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर जो है ये बहुत सारे केसेस बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अब तो ये बाय लॉ हो चुका है, इसके ऊपर मैं कहूंगा अदनान भी जो है अगली दफा तैयारी करके आए, ये तो कानून बन चुका है। ये तो अब आप गूगल भी कर सकते हैं कि 6 माह से ज्यादा आप जो है डैनिश पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 6 माह से ज्यादा इस मुल्क के आप बाहर नहीं रह सकते, और अगर 6 माह से 1 दिन भी ऊपर हो जाए तो आपका वोट कास्ट करने का भी हक चला जाता है और आपकी हर चीज जो है स्विच ग्रीन येलो कार्ड सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ, आप जा सकते हैं अगर आप अपनी कम्यून के साथ रابطہ करें और उनसे जो है इजाजत लेके जाए, फिर आप 2 साल छोड़ के 10 साल दूसरे मुल्क में रह गए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये चीजें जो है इस तरह के काफी लोग जो है वो प्रॉब्लम में आए हुए हैं और उनको बड़े मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग यंगस्टर से यही उम्मीद करेंगे, अदनान से या दूसरे जितने भी एक्टिव सोशल वर्कर है, कि आप लोग आगे आए और आकर तो रेडियो पे जो लोग सुनते हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो इजरान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छे मसाइल लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि सोशल डेमोक्रेट की जो बेसिक उनकी विशेषता है अगर आप वो पढ़ें, और आज के जो सोशल डेमोक्रेट है उनसे हम लोग मुकाबला करें तो लोगों को बताएं ये कितनी अच्छी पार्टी होती थी और अब इसके ऊपर किन कौन लोग राज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफा हम लोग खुल के बात करेंगे। जी राजा साहब।
0: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

ये टैक्सी नहीं रही। और इसी तरह एक बंदे ने यह क्लेम किया है कि उससे रॉसकिल्ड से लेके लोस्तावन यानी एयरपोर्ट तक, रॉसकिल्ड से एयरपोर्ट तक 500 कुछ करोड़ में उसने फर्स्ट प्राइस पे ये टूर उठाया है। अब आप ये देखें कि एक वॉनमैन जो है, एक ये जो नई सेल्स के भाई है, इसमें अगर वो इतना टूर, इतना 500 का टूर है तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। उसकी सेहत पे इसलिए असर नहीं पड़ता कि उसको फिक्स तनख्वाह मिल रही है। वो 200 से लेके जाए, 400 से लेके जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदे अपनी गाड़ियां लेके चला रहे हैं, जो लोग अपनी टैक्सी लेके चला रहे हैं, उनके अखराजात जो है इस मुकाबले में वो जीरो हो जाएंगे। उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब उनको याद आएगा कि कभी रेडियो आपकी आवाज पे तौकीर शाह बैठा होता था और बात करता था। ये चीजें जो है हम इनको पहले से बताते रहे हैं। अब इनके पास सबसे बड़ी जो इनके लिए प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये अब स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि ये अपनी जो सेल्स के हैं उनके साथ इनकी बैनिंग है, ये उनके साथ बाउंड हो चुके हैं, ये उनके साथ इनका वादा है कि ये उनके बगैर कोई काम नहीं करेंगे और नए कानून को एक्सेप्ट करेंगे। तो नए कानून के तहत राजा साहब ये दिल चाहे, जब दिल चाहे पीछे से कंपनी इनका नंबर बंद कर दे और इनको कहे कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे, लिहाजा हम आपका नंबर बंद कर रहे हैं। ये अदालत में भी नहीं जा सकते, ये अपनी गाड़ी ले घर जाए, उसकी लीजिंग देनी है, उसके पैसे देने हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें से ये निकले। क्योंकि मैं खुद जाती तौर पे से इस प्रॉब्लम में से, इस नए कानून से निकला था। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे अपनी सेल्स के बंद करनी पड़ी, तो मुझे 1,00,000 क्राउन जो है वो पास से देना पड़ा सेल्स के को, फिर गांव स्वीटू को, और प्लस मुझे जो अपना कोर्स होने से और दूसरी चीजों से होने से बचने के लिए मुझे 62,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिससे मुझे गाड़ी का लॉस हुआ। तो ये जो 1,62,000 करोड़ मुझे लॉस हुआ, ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ना आपको टैक्स वापस करेगा, ना आपकी कोई मदद होगी, ना कोई चीज होगी। आप लोगों ने 5-5, 6-6 लाख की, 7-7 लाख की गाड़ियां डाली हुई है। खुदारा होश के नाखन लें, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि आप लोग हड़ताल नहीं कर सकते। मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा कि आप हड़ताल करें, आप कुछ करें, क्योंकि आपका नुकसान आपका होगा और आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा। तो हम सिर्फ ये राय देते हैं कि अभी भी आप मुतहित हो जाए, अभी भी आप सिग्नेचर्स लें और आप कोशिश करें कि आप किस तरीके से इससे जान छुड़ाते हैं। अब ये 590 जो टैक्सी जो फ्राइडे से सड़क पे आ रही है, इस जुमे से जो आ रही है, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको आप देखेंगे कि आपके नाक के सामने से उबर और ये ग्रीन टैक्सी जो है, ये 2-3 मुख्तलिफ नामों से आपके सामने आ जाएगी और ये आपके नाक के सामने से टूर उठा कर लेके जा रही है और आप खड़े हैं। आप वो जो इतनी इतनी महंगी लीजिंग गाड़ियां ली हैं, इतनी इतनी महंगी इंश्योरेंस है, वो अखराजात आप कैसे देंगे? क्या आपके लिए कोई सर्वाइवल है? इसका हल बेशक आप फिमत हाल में है या आप किसी भी सेल्स के में है, इसका हल जो है ये अब क्रिसमस से पहले सबको नजर आ जाएगा। इसका हल सिर्फ ये है कि आप अपने कंपनियों से बात करें कि वो अब इकट्ठे हो और जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस कानून को जानते हैं कि इसको किस तरह डिमोलिश करना है, इसको किस तरह खत्म करना है, इस कानून के ऊपर बात किस तरह करनी है, सियासतदानों से बात किस तरह करनी है, पार्लियामेंटेरियन से बात किस तरह करनी है, ये जो जब तक आप आइन और जो कानून बना हुआ है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसके दरमियान जब आप इन एक्सपर्टीज को लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए अभी भी आसानी है कि आप अपनी जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राजा साहब, मैं लोगों को बताता चलूं कि 2022 और 2023 में जो थी, यहाँ से कम इनकम जो थी डनबार के अंदर काम करने वालों की, उनका बनता था 30,990 डेनिश क्राउन, यानी कि थाल्बर थुजंग नी होना हेल्फिम्स को होना।
और उनका जो सालाना जो इनकम बनती थी वो बनती थी।

0: पर्सन बन दी थी डेनमार्क के अंदर 3,71,900 करोड़, यानी नियरली 3,000 करोड़। तो 25-26 में इन्होंने वो बढ़ाकर कर दी 4,000 करोड़। इसीलिए तो ये स्टैटिस्टिक्स में दुनिया को बताते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। और जो 25-26 में इन्होंने 4,000 किया, तो इसके पर मंथ ये महीने किया, तो इन्होंने कम से कम जो इनके बंदे कमाते हैं तो उसके अंदर जो है ये एक महीना काम करने वाले के लिए 5,64,000 कम से कम जो है वो इसकी सालाना इनकम होती थी। लेकिन अब अगर आप 29,000 या
1: लेकिन
0: तीस
1: शाह
0: हजार
1: साहब,
0: पे
1: ये
0: काम
1: जो
0: करेंगे
1: 30 जुलाई डेनमार्क में बाकायदा सर्विस जो है होने जा रही है, इसका आगाज कोपनहेगन से होगा। पहले मरहले में तकरीबन 600 इलेक्ट्रिक टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। ये तकरीबन गाड़ियां इस नाम से होंगी, ज़्यादातर जो है टैक्सियां हैं विनफास्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, जिनमें मुख्तलिफ मॉडल भी शामिल हो सकते हैं, VFE34, VF5, दीगर जदीद इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी। शाह साहब, ड्राइवर कैसे बन सकते हैं? अगर आप ग्रीन GSM के साथ काम करना चाहते हैं तो आमतौर पर आपको ये चीज़ें दरकार होती हैं: डेनिश टैक्सी ड्राइविंग लाइसेंस, साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड, CPR नंबर, डेनमार्क में काम करने की कानूनी इजाज़त, बुनियादी डेनिश या अंग्रेजी जबान की सलाहियत, कमाई कितनी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है, अतमी तनख्वाह कंपनी कितने देती है? लेकिन डेनमार्क में टैक्सी ड्राइवर अमूमन बुनियादी तनख्वाह के साथ बोनस या क्यूशन की बुनियाद पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक टैक्सी होने की वजह से ईंधन के अखराजात भी कम होते हैं। तनख्वाह और कमीशन की तफसीलात कंपनी की जानब से मुलाजमत के वक्त दी जाती है। मुसाफिरों के लिए सहूलियात, मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग, 100 इलेक्ट्रिक और माहौल दुरुस्त सफ़र, 100% मतलब है 100% टैक्सी नहीं, 100% माहौल, डिजिटल अदायगी, जदीद और नई गाड़ियाँ। शाह साहब, अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, GSM जो है ग्रीन GSM है, तो शाह साहब बुनियादी तनख्वाह एक बंदे की या एक ड्राइवर की सहूलियात के साथ कितनी हो सकती है तकरीबन?
0: देखिए जी, जो आपने बात की, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये जीए ग्रीन GMS आने के बाद और यहाँ के जो हालात हैं, इससे इसका निचोड़ एक ही निकला है कि यहाँ पे अब पानी गंदला हो चुका है। ये इसलिए इन्होंने पानी गंदला किया है कि इस कानून के तहत जो है वो लोग अब मुलाजमत करेंगे और उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको मिलेंगी और लोगों को सर्विस जो दी जाए। अब ये जो सबसे ज्यादा फॉरनर जो थे वो टैक्सी चला रहे थे और कैब ऑनर बने हुए थे, और उनके पास उनकी जो इनकम सी जो वो कभी सही तौर पे या आगे पीछे, कुछ लोग सही शो करते थे, कुछ लोग आगे पीछे, क्योंकि यहाँ आपको ये बताता चलो कि पिछले पिछला जो लॉ गिवनिंग था, जो टैक्सा नेमन का कानून था, उसके अंदर वोनमैन को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसके अंदर यह था कि वोनमैन जो था, जब उसको बिविलिंग दी जाती थी तो वो बिविलिंग जो है ना पुलिस ले सकती थी ना टैक्स वाले ले सकते थे। उसके लिए उसको अदालत में लेके जाना पड़ता था और भविष्य करना, सबूत देना पड़ता था कि ये इस आदमी ने ये घपला किया, और ये अदालत में होता था कि क्या उस बंदे के साथ वो कोई जुर्माना वगैरह करके उसको छोड़ दिया जाए, या उसको कोई वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए, या उसे वो बिगिनिंग वापस ले लिया जाए किस हद तक, ये सारा कुछ अदालतों पे डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है ये कानून बदल के इन्होंने मिनिस्ट्री को दे दिया। मिनिस्ट्री ने क्या किया कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको ये अख्तियार दे दिए। अब आप ये देखें कि एक बड़ी कंपनी बाहर से, जितनी भी कंपनी आ रही है सब बाहर की है, डेनमार्क की कोई कंपनी नहीं है, सब बाहर की आ रही है। और अब इनका मुकाबला जो था आखिर एक संस्केप रह गई है, थ्राइगन फियर थाल्वर जो कोपनहेगन की कंपनी है, लेकिन अब उसका भी कुबाड़ा हो जाएगा और वो भी जो है बहुत जल्द जो है वो हाथ पांव उनके सुन हो जाएंगे और वो छोड़कर इसको। मैं तो ये समझता हूँ कि वो ड्राइवर जो है, अभी मेरी कल शाम को 3-4 ड्राइवर से बात हो रही
1: शाह
0: थी,
1: साहब, मेरी
0: तो
1: इंफॉर्मेशन के मुताबिक देन टैक्सी के पास भी 600 इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, क्या बात सही है?
0: जी बिल्कुल सबके पास है, गाड़ियां हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या वो
1: तो ड्राइवर
0: ये
1: भी
0: जो
1: हैं?
0: ड्राइवरों की अब कमी आ गई है, ड्राइवर ड्राइवर नहीं मिल रहे, क्योंकि ड्राइवर चाहते हैं कि हमें हमें सिक्योरिटी हो। ड्राइवर ये चाहते हैं कि हमें ये सिक्योरिटी हो कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बीमारी के पैसे मिले, हमें पहले दिन से बीमारी के पैसे मिले, हम ये नहीं कि वोमेन कह के जी तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो नई कंपनी की जो शरायत है ये बहुत ही खुशानदा शरायत है ड्राइवर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर लेस पे है तरह जो है ये डेनिश आइन के खिलाफ है। इसमें मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन जो उनका असूल है बाकी तरीके जो हैं उनके कि हम आपको देंगे क्या नाम है फायदा देंगे, आप बीमार हो जाते हैं, आप अनसेट हैं, आप छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, आपको छुट्टियों पे विद पे मिलेगी, ये उनकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या दूसरी कंपनियां जो हैं या वो बंदे जो कहते हैं जी कि हम अभी तक वॉलमैन हैं, क्या वो अपनी अपनी अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे? क्या जो आवाम है गाग जिसको हम कहते हैं वो सस्ती टैक्सी और अच्छी टैक्सी और एक ऐसी, बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कल भी पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों ने ये डेंशों ने लिखा है कि ये जो फॉरनर्स की टैक्सी थी, ये जो फॉरनर उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है फॉरनर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये रेप होते थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते थे, ये अब ये चीज खत्म हो जाएगी, अब हम ऐसी टैक्सी में बैठेंगे और ऐसी टैक्सी हम चाहते हैं डेनमार्क के अंदर के जो कंपनियां चलाएं और कंपनी जो है वो जवाबदेह होगी। तो पहले तो दूसरा सिस्टम चल रहा था तो इन्होंने सारा सिस्टम जो है उसको खत्म किया है। तो अब राजा साहब जो बातें हमने वार्निंग दी थी, एडवाइसल दी थी इन लोगों को, खुदारा मतलब प्रस्त ना बने, सामने आए और अपने जो है इस वॉरमैनशिप को इसको बचाए। तो अब ये झटका जो है जुमे को लगने जा रहा है और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा डीएसबी और बड़ी बड़ी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ये तो अब ऐसी सस्ती गाड़ियां लेंगे जिसके अंदर यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर बैठे हुए हैं, एंस वाली ड्राइवर बैठे हुए, उनको पता है कि हमने पूरी तनख्वाह लेनी है, उनको इस बात का नहीं परवाह कि ये 100 करोड़ का टूर है या ये 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का टूर, इससे इसका उनसे लेने देना कोई नहीं, वो अपनी ड्यूटी करेंगे जैसे वो फर्मों में करते थे, फैक्ट्रियों में करते थे, 7-7.5 घंटे काम किया और उसके बाद खुदाफिस गाड़ी खड़ी की और अपने घर चले गए। और ये एक बहुत अच्छी खुशानदा बात है और इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए जो जिन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी हुई है।
1: साहब आप ये सवाल ये पैदा होता है, चले पहले लोगों ने गाड़ियां ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, बड़ी महंगी गाड़ियां ली, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो यहाँ सड़कों पर गाड़ियों का मौजूद नहीं है। शाह साहब अगर माहाना तनख्वाह होती है 30,000 के करीब या 40,000 डेनिश क्रोन के करीब होती है और शिफ्टों में काम होगा, कमीशन भी ओवर टाइम भी हो सकता है, रात वीकेंड तैतील छुट्टियों में भी काम करने की जो अजाफी अदायगी मिल सकती है, शाह साहब अगर कंपनी इज्तमाही मुआहदे यानी के तहत जो है ना वो मुलाजमी रखती हैं तो आम तौर पर तनख्वाह के साथ पेंशन, तनख्वाह के साथ छुट्टियाँ, बीमारी की सूरत में तनख्वाह, तरबियत यानी ट्रेनिंग, जदीद इलेक्ट्रिक टैक्सी की ट्रेनिंग, कंपनियों की तरफ से गाड़ी की देखभाल और इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी शामिल हो सकती हैं। शाह साहब आप ये जो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने या किसी से आपकी मुलाकात हुई, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो कोई भी इस कंपनी में गया तो आपकी इंफॉर्मेशन में है कि हमारे पाकिस्तानी भाई या हमारे गैर मुल्की भाई या जो हमारे लिसनर हैं ये कितने लोग जो है इस ब्रांच में जा चुके हैं और इसका मुआयदा कितना होगा, ये ना कि सुबह निकाल दिया जाए, आज छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में, फिर उनके लिए वापसी का रास्ता क्या होगा?
0: मैं कह रहा हूँ जी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को जो है इस कंपनी में चले गए, उनको पहली फुर्सत में 3,000 ड्राइवर चाहिए थे और मेरा ख्याल में कि उनका जो है वो काफी, क्योंकि अगर वो 590 टैक्सियां निकालते हैं तो उनको कम से कम 1600-1700 ड्राइवर जो होते दिन रात के लिए उनको चाहिए थे और वो उन्होंने पूरे कर लिए, उससे ज्यादा ड्राइवर वो रख रहे हैं ताकि वीकेंड पे जो लोग छुट्टियां करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमने वीकेंड में भी काम करना है, नहीं, आपने 5-6 दिन जो मुकर्रर है, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी, और इसी के असूल पे जब वो काम कर रहे हैं तो उनको जो तनख्वाह मिल रही है और फिर उसके ऊपर जो बोनस मिल रहा है ये उनके लिए अच्छा है। फिर उनको हर किस्म की श्योरिटी है। सबसे बड़ी श्योरिटी उनके लिए यह है कि उनकी अपनी कैब नहीं है, उनको यह मसला नहीं है कि मैं वर्कशॉप में गया तो वर्कशॉप, वो वर्कशॉप तो कंपनी की अपनी है, उन्होंने अपनी गाड़ियां ठीक करनी है, उसको कहना है कि भाई ठीक है तेरी गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया तो उसको तो पे मिलेगी। अब मसला जो खड़ा हो गया है, जो दोबारे बर्लिन खड़ी हो गई है, दोबारे चीन खड़ी हो गई है, वो ये हो गई है कि जो हमारे भाई वॉनमैन बने हुए, अपने आप को वॉनमैन कहते हैं, सॉरी टू से मैं माफी चाहता हूं माजत के साथ, उनका क्या बनेगा जिन्होंने इतनी इतनी महंगी गाड़ियां ली हुई है, जिनके अपने नंबर हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या वो इस गर्मी के अंदर, ये जो अगस्त के आ रहा है आगे से यूल फेर ये आएगी उसके अंदर, फिर जनवरी फरवरी आएगी, क्या उसके अंदर वो इतना पैसा, मैं खुद वॉनमैन रहा हूं, मैं खुद सेल्सकेप चलाता रहा हूं, मुझे पता है कि ये जो सज्जे खब्बे की मारते हैं ना वो मैं, इसके अंदर कितना मुश्किल हो जाता है। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहे, आप ड्राइवर लगा नहीं सकते। मैंने कितने लोगों के साथ बात की है कि यार आप बेकार, तो उन्होंने कहा शाहजी सर जापाल आपके लिए अच्छी, और इवन टर्किश जो है वो भी चले गए, बहुत ज्यादा फॉरनर जो थे वो अब इसमें जा रहे हैं, स्टूडेंट जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये एक फिक्स नौकरी है, ये वैसी नौकरी है जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको 5 दिन काम करना है, आपको फिक्स तनखा मिल रही है, आपने कोई सड़कों पे से सवारी नहीं उठानी, आपने रेडियो टूर उठाना है, अगर सड़क से कोई मिल गया तो उसका आपको बोनस मिलेगा, बाकी जो गवर्नमेंट है उससे, अगर कंपनी आपको दिन में 10 टूर देती है या 5 टूर देती है तो उसका आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये आपको तो अपनी तनखा मिल रही है, वो आपको मिल रही है, तो ये चीजें ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ ये हो गया कि अब जो वॉनमैनशिप थी वो खतरे में हो गई है, और जो पुराना कानून था वो हमारे लोगों ने खुद खत्म कराया है, और इस बात पे जी कि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम डैनिश में बहुत ज्यादा माहिर हैं, और अब जो चीजें हैं वो सामने आ गई है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, ये जो फलके पेंशन वाले हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वो 20-25-30 घंटे काम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे या छुट्टियों में काम करेंगे, या वो 37 घंटे भी फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, ये कोई पता लगा आपको?
0: जी बिल्कुल, वो जो फलके पेंशन वाले हैं वो काम कर सकते हैं, और फोर्सेस पेंशन वाले जो हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हदूद में रह के इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और आप कितने घंटे जो है, अब क्योंकि अगर आप काम करेंगे टैक्सीज के अंदर तो आपको 3 घंटे या 4 घंटे की वो चेकअप होगा कि भाई ये कितने जा रहे हैं, वो रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली, ये नई कंपनी जो है ये कितने पैसे देती है बंदों को वीकेंड में चलने के लिए, या दूसरे कितने देते हैं, लेकिन आप काम कर सकते हैं। अगर आप फलके पेंशनिस्ट हैं तो फिर वो आपको, अगर आप फुल टाइम गाड़ी चलाना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ ग्रूम ग्लोब जो होता है ना वो आपको देंगे, आपको दूसरे जितने डेलैक्स वगैरह मिलते हैं वो आपके खत्म कर देंगे, और आपको कहेंगे ठीक है कि आप जाएं। अगर आपको 5,000 या 6,000 या 7,000 मिल रही है, वो फिर इसके साथ ये होगा कि जो आपको जो फोर्सेस पेंशनर्स या जो पेंशनर हैं इनको जो बोली यूल से मिलता है, यानी कि जो पैसे वो देते हैं कि भाई आपका किराया बहुत ज्यादा है, ये वो खत्म हो जाएगा इससे। लेकिन अगर आप सिर्फ वीकेंड में
1: चल, ये तो नेचुरल बात है शाह साहब, अगर बात बिलफर्ज में मिसाल के तौर पर चले, आपका नाम ले रहे हैं, अगर आप फलके पेंशन है, अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो कितने घंटे चला सकते हैं जो आपकी पेंशन पर आपके जो छिलेगे इस पर कोई फर्क ना पड़े?
0: देखिए अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मैंने वीकेंड में चलानी है, पहले तो मुझे काम कोई नहीं देगा अगर मैं फुल टाइम चलाता हूँ, और दूसरा ये है कि जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं इसके मुताबिक ये है कि आपको चेक एंड बैलेंस जो है ये बहुत जबरदस्त इन्होंने कर दिया है, ये देख रहे हैं, इससे मुझे जो इजाजत होगी अगर मैं वीकेंड में काम करता हूँ तो मैं पूरे महीने के अंदर जो है वो 7,000 से ऊपर का करोन जो है वो नहीं कमा सकता। अगर मैं 7,000 से ऊपर कमाऊंगा तो वो उसका मतलब ये हो गया कि वो मेरी जो सिर्फ ग्रूम ग्लोब है वो देंगे, बाकी में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं फुल टाइम काम करता हूँ तो फिर मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि फिर आपकी जो घर की इनकम है वो स्टिया कर जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर ये होगा कि आपको दो जगह टैक्स देना पड़ेगा, एक आपकी इनकम पे टैक्स देंगे, एक आप इनकम टैक्स देंगे जो आप पेंशन में कटौती करा रहे हैं, फिर दूसरा वो देखेंगे कि आपके घर के जो आपकी बीवी है बच्चे हैं घर में साथ रह रहे हैं उसकी हाउस होल्डिंग जो है उसकी इनकम कितनी है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और इससे हमारे लोग जो है वो नुकसान में हो जाते हैं। अब डेनिशों के लिए ये है कि डेनिश जो है वो हमारी तरह झूठ नहीं बोलते, वो कहते हैं ठीक है भी वो अवेयर फसाए, वो कहते हैं जी कि ठीक है वो तो हमें उनके उनको तो परवाह नहीं कि हम शादीशुदा करके साथ रहते हैं या नहीं रहते, वो लादा लादा भी हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली इस गवर्नमेंट ने जो इशारा किया था 2022 के अंदर और उसके फॉर्म है जो कानून इन्होंने बनाया था वो खसूसी तौर पर ये देख रहे हैं कि ये जो फॉरनर्स हैं ये ज्यादातर, क्योंकि इसमें जो हम बाद में इस पर डिबेट करेंगे जरूर लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि लोग जो हैं वो डेनिश तलाक ले लेते हैं लेकिन लोग मियां बीवी इकट्ठे रहते हैं और ये साबित करते हैं अपने संपर्क में अपने लोगों को, ये कहते हैं हमारा ये जुर्म है और इसमें वो काफी तहकीक कर रहे हैं और काफी लोगों को जुर्माना भी हुआ है और अब इसके ऊपर वो कितनी सख्ती कर रहे करते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि
1: चलें शाह साहब इतनी गाड़ियां और आ जाएंगी 600 के करीब आ जाएंगी तो शाह साहब पार्किंग कहाँ होगी? शहर तो उतना ही है, कोपेनहेगन से चलेंगी, शहर तो उतना ही है
0: जी। ये अब कोपेनहेगन कम्यून का मसला है कि ये अब पूरी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, उसको ये सोचना पड़ जाएगा कि मैंने जो पहले अपना टिल्डाल से मैं बिविलिंग नहीं कहूंगा, जो पहले मैंने टिल्डाल से इजाजतनामे मैंने दिए थे वो मैंने दिए थे कि पूरे डेनमार्क के अंदर चले, वो तो वो सारे के सारे कोपेनहेगन में ही रह गए और बड़े शहरों में रह गए, अब छोटे जगह में नहीं। तो अब ये जो नई गाड़ी आ रही है ये भी, तो अब आप ये खुद अंदाजा लगा रहे कि जब 3500 से लेके 5000 गाड़ी जो है वो कोपेनहेगन के अंदर घूमेगी, तो इस टैक्सी के अंदर अब काम उसको मिलेगा जो सबसे सस्ती होगी। अब यहाँ पे ये मुकाबलाबाजी होगी कि हमारा मीटर कितने पे चलता है, हम कितनी सस्ती देते हैं, हम फास्ट टूर देखे, ये जो फास्ट टूर वाला काम इन्होंने किया है ये डेनमार्क के अंदर जो है ये इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि एक ड्राइवर अगर ये जो अभी मैं रॉस किल्डे का पढ़ रहा था और मैंने आपको भेजा भी है वो कटिंग मैंने आपको भेजी भी है ताकि कोई कहे कि शाह साहब झूठ बोल रहे हैं तो वो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। रॉस किल्डे से लुफ्त हवन का 530 या 540 करोड़ का वो टूर लेके गया और अगर वो रश आवर्स में जा रहा है तो वो बेचारा जो है वो थका हुआ है, 40-50 मिनट का टूर है और वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो वोन मैन अगर वो खुद भी वोन मैन है तो वो अपने अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा, वो किस तरीके से गाड़ी के अखराजात जो है वो एक घंटे के लिए अगर वो 500-600 करोड़ कमा रहा है तो उसको तो फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि जब वो इस सारी चीज को डील करेगा इंश्योरेंसों में गाड़ी के खर्चे में सारा कुछ, तो उसको क्या मिला, उसको 80 या 90 करोड़ से जायद या हद कर दें आप तो 100 करोड़ उसको इस पूरे टूर का जेब में आएगा, तो उसको क्या फायदा हुआ एक घंटे में 100 करोड़, इससे अच्छा है वो जाके तो
1: एक बहुत बड़ा खेल होता है कारोबारी खेल से कह लें, जाहिर है रोजगार भी लोगों को मिलता है, तो शाह साहब इंश्योरेंस इन्वॉल्व होगी, रोड टैक्स इन्वॉल्व हो गया, अब तो फिक्स चीज़ें आ गई हैं, इंश्योरेंस भी फिक्स हो गई है, हर कंपनी इतनी कंपनियां आ गई इंश्योरेंस वाली कि वो गिनी नहीं जाती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं जहाँ सहूलियात हैं उस तरफ जाना चाहते हैं, तो शाह साहब आप कोई मुस्तकिल मिजाजी वाली बात नज़र आती है?
0: जी ये जब तक मुश्किल मजाजी वाली बात तो उस वक्त होगी जब हमारे जो काउंसलर हजरात हैं ये इस मसाइल को संजीदगी से देखें और वो उठाएं इसको कम्यूनों के अंदर, एग्जाम्पल ईसा है में कितने टैक्सी वोमैन या टैक्सी ड्राइवर रहते हैं, टास्ट्रो में कितने हैं, एल्बर्सोन में कितने हैं, कोपेनहेगन में कितने हैं, तो उनके लिए मसला बन जाएगा कि भाई लोग कैसे क्या करें। अब मैं आपको ये यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये जो नई कंपनी आई है अभी तक ये कानून जरूर था कि आप 33,000 से लेके 35,000 तक फर्स्ट प्राइस पे आप ड्राइवर को रख सकते हैं, फिर उनको उनकी इंश्योरेंस है, हर चीज उनको आपने देनी है, लेकिन 29,000 जो है ये, और फिर उसको हर किस्म की सहूलत देनी ड्राइवर को, ये वोमैन के वोमैनशिप को खत्म कर देगी। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, एग्जाम्पल अब बॉल्ट है यहाँ पे वो उबर है, तो ये क्या करेंगी, ये भी इसी तरीके से जब लोग अपने नंबर वापस करना शुरू कर देंगे, तंग आ जाएंगे, उनकी गाड़ियां बिक नहीं सकती तो वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे, उनको नुकसानात होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो यही करेंगे कि कंपनियां उनसे हर एक चीज ले लेंगी सस्ते दामों, और फिर उनके अंदर अपने ड्राइवर जो है, जिस तरह इन्होंने एनसेट किया, इन्होंने तनखादार बंदे मुलाजिम रखे हैं, वो भी उनको कहेंगे कि अब आप हमारे पास काम करें, आप हमारे लिए पैसा कमाएं और हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, ये आपने काम करना है। तो अब ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ये सामने आ गई हैं। तो राजा साहब, इसमें जो हमारे बड़े बड़े ड्रीम थे, बड़े बड़े
1: मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे काम होंगे लेन देन वाले,
0: बिल्कुल जी, ये सब कुछ आप अब अखबारें भरी हुई है कि जो लोग फेरिये पे गए हैं वो कार्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे, कैश पैसा इस्तेमाल कर रहे, इनको सारे किस्म की आप इंफॉर्मेशन।
1: शाह साहब देखे ना, इस पर नजर रखनी चाहिए, बार बार आप काउंसलर का जिक्र करते हैं, डेफिनेट इसके लिए काउंसलर ने अपनी अपनी कमूनों में पहले सफबंदी करनी थी, पार्किंग ये वो दूसरा तीसरा। शाह साहब, हर पार्किंग अब पैसे से होती है, फ्री पार्किंग तो कहीं भी आपको मिलती नहीं कि आप करें, कुछ जगहों पर है 1.5 घंटा 2 घंटे 15 मिनट, इतनी ज़्यादा मैक्सिमम इतनी पार्किंग आपको फ्री मिलती है। दूर दराज इलाकों में रहते हैं आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका विल्ला है आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सड़क पर तो आपने गाड़ी खड़ी करनी है कहीं ना कहीं।
0: देखिए जी, पार्किंग का पहले सबसे पहले ये है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ये मैं गवर्नमेंट को और काउंसलर्स को कह रहा हूं कि जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपका प्राइवेट विला है तो उसके अंदर तो आपकी पार्किंग जो है वो गratis है, क्योंकि वो तो आपके अपनी है, उसके राइट्स दूसरे हैं। और जो अपार्टमेंट ले रहा है, अगर वो कहीं सड़क पे या किसी पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर रहा है तो वहां पे क्या जी उसको जुर्माना लग जाता है। अगर उसका कोई गेस्ट आ जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि यहाँ पे फ्री है गेस्ट पार्किंग है या क्या, वहां पे वो जुर्माना लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दी हो रही है।
1: शाह साहब, और भी हमें शिकायत मिलती है, हमसे लोग बात करते हैं, सर इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमसे बात करते हैं। शाह साहब, जब आप शहर में घूमते हैं, एक दिन हमने भी सर्वे किया, आपको पता है कि ये डील चीज वीजा कारोबारी गाड़ियां उनकी पार्किंग होती है, ये हर वक्त आपको खाली मिलती है, रात को बाहर निकले आपके घरों के आगे पीछे जहां इलेक्ट्रिक पार्किंग है, ये पार्किंग हमेशा खाली पड़ी होती है, लेकिन आप वही का जो काम वाली गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहां खड़ी नहीं कर सकते, वो भी काम वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं वो अलहदा सिस्टम बना हुआ है। तो शाह साहब, एक आपने रोड टैक्स भी देना है, उसके बाद आपने पार्किंग भी कर रही है, फिर आपने वो पीस की जो लिखा होता है पार्किंग के पैसे भी डालने हैं, तो शाह साहब इसकी वजात जो आप सिटी काउंसलर जो बैठे होते हैं कमूनों में, सबसे जिम्मेदार लोग तो ये होते हैं, पावर तो इनके पास होती है कमेटियों में, तो शाह साहब ये मुझे एक बड़ा मनज़म जो है वो मनज़म जो कहते हैं वो स्पिल नज़र आती है, गेम नज़र आती है, स्कक नज़र आता है, आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये वहां पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहां पे खड़े होके अपने कम्यून के अंदर खड़े होके ये फौसले दे सकते हैं, वहां पे ये फौसले दे के कह सकते हैं कि देखे यहाँ पे पार्किंग के अंदर नजायज पैसे लिए जा रहे हैं, जब लोग यहाँ के 38 से 40% बल्कि 90% हर बंदा जो डेनमार्क के अंदर रहता है, खसूसी तौर पर कोपेनहेगन वेस्ट हाइन में रहता है, ये 90% से ऊपर टैक्स देता है। वो टैक्स इसलिए कि इसके अंदर जो वो टैक्स देता है, पर्सनल टैक्स देता है, फिर उसके अंदर जो चीजें बाय करता है, मम्स वगैरह देता है, ये जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा चली जाती हैं, ये तो 90% से भी ऊपर चले जाते हैं जो टैक्सेस हम पे करते हैं, तो ये हमें क्या दे रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि 80s में एक एक्सपर्टीज टैक्स का मेरे साथ बैठा था, तो वो मुझे कहने लगा कि तुम लंबे टूर लेके जाते हो या छोटे टूर, तुम किस पे राजी हो, किस पे खुश हो? खुश हो? मैंने कहा यार जितने ज्यादा मुझे पैसे बने मैं उस पे खुश हूँ। तो उसने हंसकर कहा, उसने कहा देखो तुम्हारी टैक्स कार्ड तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ, वो तो हर बंदा जो काम करता है उसके पास है। तो उसने कहा जो तुम्हारी फ्रॉड लिखी हुई है ना 5,000 या 4,000 या 2,000, वो जो तुम्हारी मंथली लिखी हुई है ना, उससे 1000 करोड़ ऊपर का लो, ये तुम्हारे तुम्हारी असल बचत है, इसमें तुमने गुजारा करना है, बाकी तो सारा ये मम्स और टैक्स में तुमसे छीन के ले जाएंगे। तो मैंने उस वक्त यंग था तो मैंने कहा ये क्या है, लेकिन अब मैं ये सोचता हूं तो मैं जब ये पेपरों को ऊपर लिख लिख के पेंसिल से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं उस बंदे को याद करके कहता हूं कि वो कितना अकलमंद आदमी था कि आज से 40-45 साल पहले उससे मुझे ये वार्निंग दे दी थी। और ये चीज डेनमार्क में हो रही है। अब डेनमार्क क्या कहता है कि हमारी ऑफिशियल जो है दुनिया को ये बताता है कि हमारा जो कम से कम बंदा है वो 3,72,000 करोड़ से कम कमाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप ये देखें ये जो आ रही है तो ये कंपनियां जो है ये तो 2,40,000 करोड़ सालाना है, तो फिर इनकी इसके ऊपर कौन बात करेगा, इसके ऊपर काउंसलर ने बात
1: करनी है ना। पहले पार्किंग की तरफ आते हैं, ये चूंकि बुनियादी सहूलियात हैं, जिसने भी गाड़ी रखी होती है, जिसने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी अब रखेगी, अब तो चंद सालों में जो है बिल्कुल हर गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाला तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, शहर की बात कर रहा हूँ। तो शाह साहब इसकी कोई मनसूबाबंदी की जाती है, आप देखें 600 गाड़ी आएगी, किसी भी कंपनी की गाड़ी है, दूसरी गाड़ियां भी हैं, आपने पार्क भी करनी है, जो लोकल लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उन्होंने भी गाड़ियां पार्क करनी है, पार्किंग की कोई सफाई भी नहीं करता। तो शाह साहब आने वाला जब हम मुस्तकबिल देखते हैं, बात एनवायरनमेंट की करते हैं, तो पार्किंग प्लेसेस तो सबसे ज्यादा गंदी होती हैं।
0: नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। जैसे मैंने 2017 में बात शुरू की थी कि ये ऊपर आ जाएगी और ये छा जाएंगे, इनको रहने दे, अपना डिफेंस करें, मैं इसी तरह ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही हैं और ये बहुत जल्द बंद हो जाएंगी। अगर आप आज की अखबारों में इंटरनेशनल न्यूज में पढ़ें तो जो टेस्ला का जो मालिक है उसको कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, और उसको सिर्फ इसीलिए कि अब लोग जो है वो खरीद नहीं रहे, बल्कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर उसने उसको कवर करने के लिए अपने अच्छा की जो कीमत है अपने उसको कम किया ताकि लोग उसको खरीदे, और वो मेरा जो नुकसान मुझे हुआ है पहले 3 माह के अंदर उसको कवर किया जाए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके बहुत ज्यादा फॉल्ट्स हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसें कोपेनहेगन में चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, कभी आप उनका इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि उनको कितनी प्रॉब्लम था। ये चीजें जो हैं अगर जाती हैं, मैंने खुद अपने घर में अपने बेटों की गाड़ियों को देखा है कि नुक्स के लिए 7-7 महीने लग गए, उनको पता ही नहीं लगा, उसकी जगह उन्होंने फिर नई गाड़ियां दी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें आम आदमी के लिए बहुत बड़ी नुकसान है। लोग जो है अगर खुदा ना खासा कल को ये जो कंप्यूटर का ये जो चल रहा सिस्टम अगर ये एक दूसरे के कंप्यूटराइज सिस्टम को बंद कर दे, कुछ ये कर दे, सैटेलाइट्स को बंद कर दे, कोई ऐसी टेररिज्म सिस्टम हो जाता है,
1: चलती रहेंगी। लेकिन फैसले जब हो जाते हैं, जब अक्सरियत, तो आपको पता है हम जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, जब जमहूरी
0: मुल्क खत्म हो गया जी, जमहूरी मुल्क खत्म हो गया, ये जमहूरी मुल्क होता तो ये पार्किंग का जो था सिलसिला ये लोगों के लिए आसान करता, ये बूढ़ों के लिए आसान करता। 8,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ हूसला है कोपेनहेगन के अंदर, उसकी पार्किंग का जो है कोपेनहेगन में मेरे पास इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, आपने भी कुछ बताया था, कुछ लोगों ने बताया कि एक एक लाइन के अंदर जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो 3,500 से लेकर 4,000, और जो महंगा एरिया वहां पे 4,000 से भी ऊपर जो है एक पार्किंग प्लस का वो ले रहे हैं। अगर एक घर में 2 गाड़ियां हैं तो वो 2 पार्किंग प्लस अगर ले रहे हैं तो वो तो 5-6 हजार करोड़ उधर दे रहे हैं। तो ये
1: एक सवाल पैदा होता है शाह साहब, आप पार्किंग में खड़े होते हैं, आपको पार्किंग में क्या सहूलियत मिलती है, लाइसेंस आपने लिया उसके बावजूद आप पैसे देते हैं
0: जी? तो ये नहीं होना चाहिए, पार्किंग फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्किंग फ्री इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो आपकी जो आइटम है जिसके अंदर आपने लायक किया हुआ है या आपने घर फ्लैट खरीदा हुआ, एक तो वो डबल कमाई कर रहे हैं।
1: और उसके साथ बात की तरफ मैं आता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ शाह साहब। एक बंदा एक घर में, 4 बंदे फलक हैं 2 बंदे फलक हैं, एक घर में 4 गाड़ियां उसी एड्रेस पे या 3 गाड़ियां, तो शाह साहब पार्किंग का प्रॉब्लम तो आएगा, हमें भी तो सोचना चाहिए।
0: नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन गाड़ियों को बजाय लीजिंग करने के, गाड़ियों को ये करने के, गाड़ियों की प्राइसेस नीचे करके गाड़ियों को बाय करने के लिए अगर रखे तो किसी आदमी के पास 40-50 हजार करोड़ इतना कैश नहीं होता कि वो जाके ब्रांड न्यू गाड़ी जो है उसकी उठ बचनिंग जो कर सके। अब लीजिंग का जो मसला है कि आप 40-50 हजार करोड़ लीज कर देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसकी 3-4 हजार करोड़ जो है वो मंथली आप देते हैं, और बाद लीजिंग इतनी सस्ती है कि आप उसके अंदर 20 हजार करोड़ देते हैं तो आप गाड़ी लीज कर लेते हैं। तो लोग जो है वो उसको लीजिंग गाड़ियों पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पार्किंग जो है लोग देखते हैं कि किस जगह पे पार्किंग जो है वो फ्री है, तो वो फ्री पार्किंग वाली स्ट्रीट पे जाके अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, और जो पेमेंट करते हैं जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं आप उनके पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि अब तो आपके फ्लैट का नंबर लिखा होता है उस पार्किंग में। मैं अगले दिन बेलारूस गया था तो वहां मैंने एक टर्किश के पास जाना था, तो वहां पे वो बादशाह नीचे आया, उसने कहा कि गर्दज तुम यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, तुम्हें बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हर लाली के लिए एक एक पार्किंग प्लेस है और वो उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता, नहीं तो फौरन जुर्माना लग जाएगा। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इतने दूर से मैं चल के पैदल अब आऊंगा, तो ये जो मसाइल है ये किन्होंने किए,
1: आहिस्ता आहिस्ता लोग जो ज़हनी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, अब ये कम्यून के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं ये इनकी वजह से है, ये इनकी नेकलेस है, ये लोग इस चीजों पे बात नहीं करते कि हमारे लोगों की डिमांड क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा फोटो सेशन हो रहा है, हम कहाँ अपनी तस्वीर लगाएं, हमें कौन बुला रहा है, किस पार्टी में हमें नहीं बुलाया गया, किस पार्टी में हम जाएंगे, किस शादी ब्याह, बस ये इनका चीज रह गई है। ये मैं उर्फे हमें ये कहूंगा,
1: तो साहब इसका मतलब है कि वोटर को जो वोट देने वाला उसको अपनी पावर का पता ही नहीं है,
0: पता ही नहीं है। ये मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है, प्योर पाकिस्तानी, ये डेनिश सियासतदान नहीं है, क्योंकि डेनिश सियासतदान जो है वो किस कहीं भी तख्ती नहीं लगाता कि ये मैंने ये काम करवाया इस पे मेरा नाम आया, नहीं, वो कहता है ये कम्यून ने कराया, गवर्नमेंट ने कराया, और जो वहां का बॉम मिनिस्टर होता है उसका भी नाम नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे सारे, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि डेनिश जो है वो जब किसी भी असेंबली में हो, बेशक वो कम्यून की असेंबली में बैठे हो या पार्लियामेंट में, तो वो तैयारी करके आते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है। तो जब आप सारा दिन अपने कारोबार में रहेंगे, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप थके हुए जाएंगे, फिर आपने अपनी बीवी बच्चों को संभालना, फिर आपने किसी शादी ब्याह पे जाना, तो आपको वो कहते हैं जी आपने
1: क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शाह साहब देखें ना कि जो तंजीमें लगातार काम करती हैं, जिनका मतलब अरसा दराज से अपना काम करती हैं, वो बात तो हमें समझ आती है। शाह साहब ये आमों का फेस्टिवल जो है वो इसका बिल्कुल जो है वो रश आया हुआ है, जो सलमा हाउस जो है फुल जा रहा है, लेकिन डी पैक जो एक तंजीम है गालबन पाकिस्तानी डेनिश बिजनेस अफेयर काउंसिल है, ये पिछले 7-8 साल से ये करा रहे हैं, देखें मुसलसल करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं, इनका प्रोग्राम हुआ बहुत कम या प्रोग्राम था कसीर तादाद में, मैं नहीं समझता कि इतने लोग कभी किसी प्रोग्राम में गए हों, लेकिन शाह साहब वो तो तसलसल से करा रहे हैं, उनका कहा था हमें कोई जो हमें जिस कीमत पर मिलते हैं हम आगे बेच देते हैं, आगे लोगों को सर्व कर देते हैं, मेहनत होती है, अखराज डेफिनेट अखराज तो निकालते होंगे जो समझ आती है, लेकिन शाह साहब हर रोज़ मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और ये इतना ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी की जा रही है, तो शाह साहब अगर कभी हमने अपने मसाइल की भी एडवर्टाइजमेंट की है कभी?
0: नहीं जी, हमने कभी नहीं की, और ये जो है ये खुद मसाइल में गिर चुके हुए हैं, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टैक्स की और जो है वो अपना मम्स वगैरह की उनकी नजर पड़ चुकी है इनके ऊपर, और बहुत ज्यादा पाइपलाइन में है और बहुत ज्यादा लोगों ने क्रय किया कि वो 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ जो है वो देते हैं बकायदा एक टेबल का, तो ये चीजें जो है बाहर निकल चुकी हैं, लोगों के टेलीफोन टेप होते हैं, तो हर चीज, लेकिन ये आस्ता आस्ता ये आप याद चीज याद रखे, ये वाइकिंग है, ये बैरी करजाक है, ये बड़े बड़े शिपों को लूटते हैं, ये छोटी छोटी डैनिश छोटी छोटी चोरी नहीं करते, तो ये जब पकड़ते हैं तो ये छोटे छोटे चोरों को इंतजार करते हैं कि इनका माल उतना हो जाए जब ये एक बड़े शिप के बराबर, तो फिर हम इनके इनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो लिहाजा मैं यहीं पे बात खत्म करूंगा कि हम लोगों ने अपने हाथ काटे हैं, अपने पांव काटे हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। और अगर ये चीजें जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ये चीजें जो है हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अपने आप को भी खुश रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। और किन किन के ऊपर होंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सोर्सेज हैं, मैं चिड़िया तो नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी चिड़िया ये है, क्योंकि मैं डेनिस सियासत में हूँ और जो मैं स्टडी करता हूँ, और इस वक्त जो पुराने सियासतदान जिनसे गुफ्तगु होती है डेंशो से, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त 800-900 से ज्यादा टैक्स केसेस जो है वो इन पाइपलाइन में, जो बड़े किस्म के टैक्सेस हैं, और ये कब खुलेंगे, कब आएगा, ये जो है वो
1: बड़ी मछलियों की बात हो रही है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे कि यहाँ के रहने वाले शहरियों को अपनी अपनी कम्यूनों में बैठ कर क्या करना चाहिए?
0: ये इनको जब तक ये आवाम से रابطہ नहीं रखेंगे, ये आवाम से ये नहीं पूछेंगे कि आपकी जनरल तकलीफात क्या हैं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर आईन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां पे आप जाकर बात नहीं करेंगे उस वक्त तक। देखिए हमने कितनी दफा कहा है कि ये लोग कम्यूनों में ये जाके कानून बनाए, कभी किसी ने आके कहा काउंसलर ने कि जी हमने इसके ऊपर बात की है? नहीं। ये चीजें जो है,
1: कभी आपको दावत मिली है किसी काउंसलर ने कहा होगा जी आज आए हमारी डिबेट हो रही है, आप आए हमारे मेहमान बने?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको बुलाते हैं कि जो उनके आगे बाह बाह करे, ताड़िए करे। वो एक शायर था तो वो शेर व शायरी कर रहा था, तो बंदे वाह वाह वाह वाह कर रहे थे, तो मैंने एक को पकड़ के पूछा, मैंने कहा बंदे ने पुत्र इतनी वाह वाह कर रहे, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा जी बड़ा अच्छा गया था। मैंने कहा क्या कह रहा था? उसका सब्जेक्ट गया था, उसका वो बोल कर रहा था, तो आगे से वो मेरा मुंह देखने लगा और हाथ चढ़ के चला गया। तो ये चीजें हैं कि ये वाह वाह करने वाले लोग हैं, हमें बुलाएंगे तो हम तो क्रिटिसाइज करेंगे, हम तो उनको बताएंगे तुम्हारे लिए बेहतरी है भाई, ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ है, ये जो 100-400 के करीब कानून बने हुए हैं, ये आइन के खिलाफ है, या आप इसके ऊपर बात करें, और वो कर सकते हैं, बेहतरी उनकी है, लेकिन वो क्या करेंगे?
1: तो शाह साहब ये जमहूरी मुल्क का आखिरी सवाल है, जवाब इसका दें, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ तो सारे काम जमहूरियत से होते हैं, जहाँ जमहूरियत जिस तरफ ज्यादा होगी वही कानून बनेगा, वही बंदा जीतेगा। तो शाह साहब पहले सबसे पहले तो आवाम को जमहूरी बनना चाहिए।
0: देखिए जी ना, हम लोग जमहूरियत को समझते नहीं है, हमें पहले यही नहीं पता कि जमहूरियत आई कहाँ से। हम कहते हैं जी डेमोक्रेसी जो है ये यूरोप से आई है, ये इनकी है, हालांकि इनका कानून पढ़े तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी हम लेके आए थे कैसकस दुनिया से, ओल्ड टर्की से हम लेके आए थे, वहां किनकी थी, वहां पे इस्लाम था। अगर आप इनसे पूछे जी क्या है पाकिस्तान में, सुने जजों से, सुने दूसरों से, वो कहते हैं जी ये जो कैद खाने हैं ये सब कुछ अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज रखे। इस्लाम को देखे, इस्लामी हिस्ट्री को देखे, तो कैदियों के साथ जो हौसले सलूक किया जाता था वो इतने जालिम नहीं थे जितने आज के लोग जालिम हैं। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी लाने वाले मुसलमान थे।
1: सवाल आ गया हमारी तरफ शाह साहब, चूंकि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत को देखते हैं जहाँ जहाँ दुनिया में चल रही होती है, हमारे साथ रिलेटेड होते हैं कि यहाँ की जमहूरियत। शाह साहब आजकल जो जमहूरियत ने कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मेहरबानियाँ की हुई हैं, सब पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, बसें भी दी जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों का भी ऐलान हो रहा है, मोटरवेज का भी ऐलान हो रहा है, तो शाह साहब ये चीज़ें तो वक्त से पहले भी हो सकती, चले देर आए दुरुस्त आए, तो शाह साहब ये जो ख्वाब लोग देख रहे हैं, वोट तो उन्होंने देना है, उन्होंने सोच समझ कर देना है, लेकिन शाह साहब हर पार्टी अपना डीजल पेट्रोल तो बेचती है।
0: देखो जी सारी ये आपने बात सही है, पेट्रोल फेंक रही है सारी पार्टी, पेट्रोल फेंक रही है सारी पाकिस्तान जो पार्टीज हैं इस वक्त, जितनी भी पार्टीज हैं उसमें काफ हो, नून हो, पीपल हो, पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, फजल रहमान की फे हो, ये सब की सब जो है ये पेट्रोल फेंक रही है अवाम के ऊपर, अवाम को आपस में लड़ा रही है अपने वोट के मकसद मकासद के लिए। लेकिन कल को होगा क्या? कल को ये होगा कि वहां पे नफरतें फैल जाएंगी आपस में, खानदान इस इलेक्शन के अंदर खानदान जो है वो बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हमारे गुजरात में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, जो रह रहे हैं कि तुमने इसको वोट नहीं देना, इसको वोट देना, आपस में इन्होंने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया इनके झूठे। लेकिन कल को इन्होंने कोई काम नहीं करना, कल को इन्होंने कोई ऐसी काम नहीं करनी। ये हैं पेड बाय यूएई, ये एजेंट्स हैं और ये लोग आए हैं, और जब तक ये
1: शाह साहब आपने कम्यून के इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहीं पे ब्रेकिंग न्यूज दी थी, तो शाह साहब एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन में नू लीग जो है अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है। कुछ भी हो सकता है आखिरी टाइम पर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो आज की जो ताज़ा मैं आप ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हैं कि कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और ये अकल भी कहती है और ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, जितनी बड़ी कंपेन की जा रही है, जितने बड़े तरीके से की जा रही है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, शाह साहब वोटर सपोर्टर को तो नज़र आता है, हमें सहूलियात क्यों कौन देगा। पंजाब को देखा जाए, दूसरे जब सूबे देखते हैं तो वो कहते हैं पंजाब में क्यों तरक्की हो रही है, बजट तो हमें भी मिलता है, बजट तो कश्मीर की तरफ भी जाता है, बजट तो केपीके में भी जाता है, बजट तो सिंध में भी जाता है, डेफिनेट तरक्की हो रही होगी जहाँ जहाँ हो रही है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पर, थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा कि नून लीग का हुकूमत बनाने जा रही है आज़ाद कश्मीर।
0: नहीं बना सकते, अगर असूली तौर पर देखें जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके मुताबिक ये जाकर आज़ाद कश्मीर के जो अपनी अपनी उनकी अवामी ताकत है, उनके अपनी जो पार्टीज हैं, उनके अंदर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनके आप पंजाब से उड़े या आप अपने इलाके इस्लामाबाद पिंडी से जाएं, तो आप आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जब आपको ये अख्तियार वो आइन नहीं दे रहा, तो फिर आपको ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमारी सियासी पार्टी है। देखिये, जब इंडिया वाले जो है वो सूबा कश्मीर में अपनी पार्टियों को की सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वाकई ही कश्मीरियों के हक पे दोनों मुल्क जो है ये डाका डालते हैं, इनको कोई हक नहीं कि आईन के मुताबिक ये जाकर और ऐसी बातें करें और ये कहें जी कि हमारी पार्टी जीतेगी, हमारी पार्टी जीतेगी, ये इनको नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनको आजाद छोड़ देना चाहिए। आजाद कश्मीर के लोग जो है वो खुद अपनी पार्टी बनाए और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो पाकिस्तान में,
1: तो उनकी अपनी बनी हुई है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर कानून है, उनके अपने सदर पार्टियां तो बनी हुई है। तो शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। धूप और साया साथ साथ चल रहे हैं, सियासत भी साथ साथ चल रही है और ख़बरें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वक्त हम आपको अपने थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब के पास लेकर चलते हैं कि उनके पास आज क्या है। शाह साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको।
2: आपके नाज़रीन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। शाह साहब, मौसम और ये सारी चीजें, ठंडा गर्म चलता रहता है, सियासत भी चलती रहती है, आज क्या लेकर आए हैं हमारे सामान्य नाज़रीन के लिए?
3: देखिये, इस वक्त मौसम जो है वो अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है। हम लोग पिछले एक हफ्ते कुछ गर्मी हुई थी, लेकिन बारिशों की वजह से, क्योंकि सख्त पानी की कमी हो रही है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पानी, पीने वाले पानी की कमी हो रही थी, इसलिए बारिशों का डेनमार्क के अंदर होना बहुत ही जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मौसम यहाँ पे बना दिया कि आज भी वो कह रहे हैं कि डेनमार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेज, जो जिसको स्काईपुल कहा जाता है, वो बारिश होगी। और ये अच्छा शगुन है कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, नबातात और हर किस्म के जो दूसरी चीजें हैवानात पर हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है। जमीन के अंदर भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की बहुत शदत से जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला की ये रहमत है और रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपको पता है कि यहाँ पे फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और उनकी भी जो है प्रॉब्लम वो बारिश की वजह से सामने आ रही है, हर एक चीज हो रही है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है और बिल्कुल इस तरह का मौसम है जैसे कि हम मरी में आए हैं। हल्की हल्की हवा चल रही है और ये हवा जो है ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। छुट्टियां खत्म हो जाएंगी फिर जो है सियासतदान बात करेंगे, अभी तो छुट्टियां पर हैं, तो अभी तो शुगर लगा हुआ हर तरीके का, खबरें फिर भी आ रही हैं, तो क्या खबरें भी तुमको बताया मैं?
3: देखिए जी, खबरें इस वक्त तो इंतहाई, पूरा दुनिया, पूरा यूरोप, इवन डेनमार्क जो है यूरोप के अंदर, हमने अगले दिन भी ये बात की थी कि यूक्रेन के बाद अगर देखा

उसका जो अज़्म होता है वो अवाम की बेहतरी के लिए होता है, अवाम को इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, अवाम के साथ उसका रब्ता जुड़ा रहता है ताकि अवाम कल को उसको यतीमी की सूरत में बनाकर लोगों के सामने जाकर ये ना कहना चाहिए कि जी मुझसे गलती हो गई है मुझे वोट डालने, नहीं बल्कि लोगों को इल्म होना चाहिए कि ये उनके लिए जाग रहा है और उनके लिए काम कर रहा है। तो हमारे सियासतदानों को आना चाहिए। अभी अगस्त का महीना आ रहा है, ये जुलाई का महीना तकरीबन खत्म हो गया, तो सितंबर 5 सितंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है जो फॉरनर्स के खिलाफ है। इसी तरीके से जो कवानीन है यहाँ के, मैंने हजार बार ये बात आपके रेडियो से आपकी जरिए से ये बात नशर की है कि डेनिश आइन और डेनिश लॉज में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे लोग, हमारे सियासतदान जो हमारी जुबान अहले जुबान है हमारे, वो इस बात को क्यों नहीं समझते कि जी नहीं ये ऐसे है ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप महफिलें लगा रहे हैं, आपके पास इस वक्त बहुत बड़े चांस है, इतने मैंगो फेस्टिवल्स हो रहे हैं कोपेनहेगन के अंदर, कोपेनहेगन से बाहर हो रहे हैं, आप वहां पे जाके अपने स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को हर जुबान के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं, आप लोगों से जाती तौर पे, यानी कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जाएं मैंगो खरीद रहे या अपना फोटो सेशन कराने के लिए मखसूस लोगों से जफे मारने के जरिए आप चाहे या कहीं क्रिकेट में जाहिर होकर आप ये कहें जी कि इससे लोगों पे बहुत ज्यादा हमारे असरात पैदा हो गए, नहीं ये गलत चीज है। आपको हर इंसान के साथ बात करनी चाहिए, उनसे उनकी मुश्किलात का पूछना चाहिए, सिर्फ सलाम अलैकुम करना या फोटो का सेशन करने से नहीं, आपको बताना चाहिए लोगों को। तो खुसूसी तौर पे जो हमारी वहां पे बहनें बेटियां आई होती हैं लेडीज, आपको उनसे मुखातब होना चाहिए, उनको ओपनली ये बताना चाहिए कि यहाँ के कानून क्या बने हैं, यहाँ पे क्या सख्ती है। अब कम्यून में जो लोग काम करते हैं उनका फरीजिया क्या है कि वो लोगों को क्या बताए, यहाँ के जो मेडिकल बीमारी पे लोग होते हैं इनको इनको ये इल्म नहीं कि जब डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के देता है तो वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से तो लिखवा लेते हैं लेकिन जाके उसको अपोथिक से बाय नहीं करते। जब तक वो अपोथिक से बाय नहीं करते तो कम्यून को इस बात का पता लग जाता है, गवर्नमेंट को फौरन पता लग जाता है कि इसने डॉक्टर से ये चीजें लिखवाई हैं लेकिन ये चीजें इसने खरीदी नहीं, तो उस पे उसका झूठ सच पकड़ा जाता है। बाद में ये लोगों को कहते हैं जी किसी ने हमारी शिकायत कर दी, देखे जी फलाने ने ये कर दिया। देखे जो मेडिसिन जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आप ये डॉक्टर को ये बता रहे हैं कि मुझे घुटनों की या मुझे कमर की या मुझे जो बीमारी है उसकी दवाइयात जो है वो जो भी वो लिख के देता है डॉक्टर, वो आपको बाय करनी पड़ेगी। अगर आप बाय नहीं करते तो वो आपके कम्यून के पेज पे बकायदा रजिस्टर्ड होती है कि इस बंदे ने ये दवाई ली, उसका कितना आपके दवाइयों का सालाना खर्चा कितना, महाना खर्चा कितना, ये वहां पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ये काम हमारा बताने का नहीं, ये काम है जो सियासतदान जो काम कर रहे हैं, जो कहते हैं जी कि हम वेलफेयर तंजीमें चला रहे हैं, यहाँ पे जो तंजीमात बनी है ये उनका लोगों का काम है कि आके लोगों को अवेयरनेस दे। इसी तरीके से जैसे ये मैंगो फेस्टिवल्स हैं ये दूसरी चीजें हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो पब्लिक में भी आ रही है, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, लेकिन क्योंकि ये लोगों का काम है इसके ऊपर भी लोगों को ये कान धरना चाहिए कि ये चीजें जो है ये एक्सप्लोर हो चुकी हैं। कब इसके ऊपर काम होगा मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इल्म में ये बात आई है कि केसेस जो है वो रीओपन हो चुके हैं और क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला हमारी कौम को, ये हमारे लिए एक बेहतरीन बेहतरीन चीज है कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लग रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि इनको लीगलाइज तरीके से लेके चले, लोगों को इंफॉर्मेशन दे। राजा साहब मैं आपको एक ये बात बताऊं कि जहां पे भी फूड फेस्टिवल लगते हैं आप, ये फूड फेस्टिवल जो है ये बकायदा आपको हुकूमत यानी कि लोकल कम्यून की इजाजत के बगैर आप नहीं लगा सकते, आप उनको आपको कम्यून को डिटेल्स बतानी पड़ती है हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी फूड होगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सारा कुछ जो है ये कानून जो है ये

0: इतनी लगी होती है कि पासपोर्ट डेली कोई 500 पासपोर्ट बन रहे हैं, 500 कार्ड बन रहे हैं, तो वो दोनों बंदा, एक ही बंदा नादरा का, वो दोनों काम कर सकता है। उसको मुझे मुझ में हमारे हमें बकायदा इन्फॉर्मेशन है कि वहां पे उस बंदे को ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद उसको सिस्टम दिया गया, और उसमें और नॉर्वे में लोग देखें, नॉर्वे में 50,000 लोग हैं, यहाँ पे 35,000 बंदे हैं, यहाँ पे 35,000 बंदे। आप नॉर्वे जाए अगर कोई मुश्किल पैदा आ जाए, तो हमें चाहिए कि अम्बेसी हर वक्त नारा लप्पा लगाती है। मैं समझता हूँ कि अम्बेसी इस वक्त कम्युनिटी के लिए जीरो काम कर रही है, और इसके लिए नादरा के लिए काम करना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि हमारे हमें मस्जिदों में जाते हैं, हम प्रोग्रामों में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जी वो नादरा का बंदा, नादरा का बंदा, क्योंकि उन लोगों से नहीं होता। मेरे जैसे बंदे से भी किसी वक्त कंप्यूटर पे कोई चीज मिस हो जाती है, मुकम्मल नहीं होती। तो मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा कि हम मिल के, और आप राज साहब क्योंकि कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन है, हमें मिल के ये इस काम को आगे बढ़ाना है। हमने ये नहीं कहना अच्छा जी करेंगे, अच्छा जी मुलाकात करेंगे, नहीं, हमने इसका रिजल्ट लेना है और अपनी आवाम को
1: इसका रिजल्ट लेना है और आवाम को बताना है। बड़ी अच्छी बात की है। आगा साहब, आपके पास भी जिंदगी का बड़ा तजुर्बा है और बहुत सारे मराइल से आप गुजरे, और आखिर में कम्युनिटी को क्या मशवरा देते हैं?
2: बात यह है जी, वो सब अगर एक मुट्ठी होकर चलेंगे ना तो कामयाबी आपके पास है, अगर आप बिखर के जाएंगे तो बस आप कटते जाएंगे। तो मकसद ये है हमारी यहाँ कम्युनिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम लोगों में बहुत इत्तफाक है, प्यार है, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। बीच में कोई अगर एक आध बंदा ऐसा आ भी जाता है जो कि इस राह में रुकावट बने, तो वो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन क्योंकि जैसे कि मुजीब साहब है, मियाँ साहब है, शाह साहब है, शौकत साहब है, सब लोग, आप है, राजा साहब आप है, आप हमें गाइड करते हैं, आप नई नस्ल को भी गाइड कर रहे हैं। तो लिहाजा इन कोई भी मसाइल है ना, तो वो अम्बेसी के लिए कोई मसला नहीं है कि भाई कोई एक बंदा लाया जाए, या जैसे कि भी मुजीब साहब ने कहा कि नॉर्वे में एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो यही चीज यहाँ कोपरेकर में भी हो सकती है। तो लिहाजा मेरी तो राय यही है कि ठीक है, अम्बेसी में लोग आते हैं, अब वो उनका शॉर्ट टाइम होता है, 2 साल 3 साल जितना भी पीरियड होता है, वो अपना काम करते हैं, लेकिन अगर खुश असलूबी से काम करेंगे, प्यार मोहब्बत से करेंगे, तो इनका भी एहतराम रहेगा और अम्बेसी का भी म्यार ऊंचा रहेगा।
1: अगर सब काम हुआ है तो इसीलिए हमारे तालुकात डेनिश गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के और डेनमार्क के बड़े अच्छे हैं। कैटेगरी 5 पे हमने बोला था जीशान को, वो भी काम कर रहा है। तो शाह साहब, आखिर में आप अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें, प्रोग्राम को क्लोज भी करें। चौधरी शौकत साहब हमारे साथ हैं, मुजीब साहब हैं, आगा साहब हैं, मियां साहब चले गए। जी शाह साहब,
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे बड़ा मसला जिसका अभी मुजीब कुरैशी साहब ने बात की है, मैं इसे अग्री करता हूँ, लेकिन जब तक हम सारे जो इस रेडियो पे बड़े बैठे हुए हैं और जो बड़े हमें सुन रहे हैं, हम सब लोग एक कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एक जगह इकट्ठे होकर इन मुश्किलात का हल देखें, हमने खुद निकालना है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लेम गेम देंगे तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ डेनमार्क की गवर्नमेंट से ये कहना है कि हमें कैटेगरी 5 से निकाले, हमारे लिए पीजा वीजे की कैसे कैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ के आइन में बकायदा है, आप बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री को टेलीफोन करके जाएं कि मेरी जो इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान में गेला नहीं करती, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो उनसे आप कह सकते हैं कि मैं सियालकोट में जा रहा हूँ, गुजरात में जा रहा हूँ, लाहौर में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद, ये इलाके वो हैं जिसको बहुत सर्विस फॉरेन मिनिस्ट्री गोखेंद करती है कि ये वहां यहाँ पे कोई खतरा नहीं, तो इन इलाकों का नाम लेके जाते हैं, तो फिर जो है वो इंश्योरेंस वालों को आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वो आपकी बीमारी के पैसे हर चीज के बंदोबस्त आपको करती है, जो हम राइजर फर्स्टिंग करते हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम इकट्ठे होकर इस गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, डेनमार्क की गवर्नमेंट को, तो उस वक्त तक हल नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है कि पाकिस्तान अम्बेसी को एक चार्ट जो है, एक चार्ट जो है वो इशू करना होगा कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी डेनिश पासपोर्ट होल्डर है, कितने पाकिस्तानी ड्यूल पासपोर्ट होल्डर है, यहाँ पे कितने जो है वो लोग रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये इंफॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। क्योंकि ड्यूल अगर डेनिश नेशनल पाकिस्तानी है तो वो भी, अगर ड्यूल नेशनल नहीं तो वो वीजा तो पाकिस्तान का लेके जाते हैं। तो ये चीजें जो है, मैंने तो इजी काम किया हुआ है, मैंने तो 10 साल का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था, उम्र मेरा बन चुका है, वो मैंने रखा हुआ है, मुझे तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं, ना वहां प्रॉपर्टी खरीदे की ना यहाँ। हमारे लोग ही जो है अगर मजीब करें

0: जा रहे हैं या आप जा रहे हैं एज ए कम्युनिटी के, तो मैं जब एम्बेसडर से मिलूंगा या पाकिस्तान में किसी सियासी से मिलूंगा तो रबियत करना मेरा काम है, तो मैं ये कहूंगा कि छोड़ो जी इनके पीछे तो 10 बंदे नहीं है, आप रहने दीजिए, हमारे ऊपर ये है, हमारी वहां की शराइत क्या है गवर्नमेंट की, तो ये ड्यू नेशन वालों को या इस तरह के कार्ड देने वालों को नुकसान है, तो ये खुद भी हम लोग नहीं बनने देते, तो लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां मुनीर साहब का, चौधरी शौकत साहब का, मजीब कुरैशी साहब का, आगा साहब का और आपका कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो कैटेगरी 5 है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, इस पे हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं इन सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इसके ऊपर कम्युनिटी के फायदे के लिए बात करनी चाहिए। जी राजा साहब सबको शुक्रिया,
1: आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी शौकत साहब आपका शुक्रिया, आगा साहब, मियां साहब, मजीब साहब। तो चलते चलते एक नारा लगा लेते हैं, पाकिस्तान
2: जिंदाबाद,
1: फौज जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.